0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 MHz ਕਿਲੋਹਰਟਸ, TRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, FM 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े

0: नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेब 47.6 मेगाहर्ट्ज़ 73 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

0: अनुशासन मनुखी जीवन का जरूरी अंग है। अनुशासन तो बिना मनुखी जीवन उस बेड़ी वर्गा है जिसका मलाह ना होवे, या फिर उस चिट्ठी वर्गा जिस उपर सिरनामा ना लिखा होवे।
1: ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਲੋ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਾਧਨਾ।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगलवाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: जी दोस्तों, कहिंदे आ कि जिंदगी दे विच सानू अपने जिहड़े आ किसी नाल गुस्से गिले आ वी उन्हां नूं जल्दी जल्दी नबेड़ लेना चाहीदा है, क्योंकि चलदे फिरदे इंसानां नूं तस्वीरां बंदे देर नहीं लगदी। सो अपने आले दुआले अपने रिश्तियां दी कदर करो, जिंदगी दे विच उन्हां पलां दी कदर करो जिन्हां पलां दे विच तुहाडे कोल सब कुछ है, ते उन्हां सब कुछ दे नाल तुसीं अपनी जिंदगी सोहनी बतीत कर रहे हो, क्योंकि कदों जिंदगी करवट लेवे इस दा सानू ते तुहानू किसे नू वी नहीं पता। ते करवट इंसान दी जिंदगी दे विच उदों वी लै हुंदी है जदों असीं उन्हां शख्सियतां नू जानदे हां वी जिन्हां ने अपने संघर्षां दे नाल इतिहास दे पन्नियां दे विच अपना नाम दर्ज कराया हुंदा है। ते अजिही शख्सियत नू असीं याद कर रहे हां, असाम दे महान आजादी सेनानी, समाज सेवी अते दूरदर्शी नेता गोपीनाथ बोरदोलोई नू। 6 जून 1890 नू असाम दे राहां विच जन्मे गोपीनाथ बोरदोलोई ने आज़ादी अंदोलन दे विच सरगर्म भूमिका निभाई अते असाम दे लोकां दे हक्कां दी रक्खिया लई अहम योगदान दिता। वह असाम दे पहले मुख्यमंत्री बने अते सिक्ख्या, सेहत, खेतीबाड़ी अते विकास दे खेतर विच कई महत्वपूर्ण कम्मां दे कारण उन्हां नू जाणिया जांदा है। उन्हां दी सादगी, ईमानदारी अते लोक सेवा दे जज्बे कारण लोक उन्हां नू प्यार नाल लोकप्रिय कहिंदे सन, ते देश प्रति उन्हां दीआं विशेष सेवावां नू सन्मान दिंदिया भारत सरकार ने 1999 दे विच उन्हां नू मरनो उपरंत भारत रत्न दे नाल सन्मानित कीता। ते उन्हां दे जीवन दे विच अज सानू देश प्रेम, सेवा अते समर्पण की प्रेरणा दा

जो आवाज लगाए झूठे कर दूंगा। तज्जम तकजम तकनम तकदम तत्संगित तकदिर तक तज्जम तकजम तकनम तकदम तत्।

ते खास फुली लिटरेट क्लब दे विच शामिल हो गया है। सिक्किम दे लोकां नूं भी असी इस इतिहासिक जित दे लई बहुत बहुत मुबारकां दिंदे हां ते उम्मीद करदे हां कि साडे होर राज भी फुली लिटरेट होण दे वल अपने कदम जरूर वधाउणगे। कदम तां साडा भी वध गया प्रोग्राम दे विच अगले गीत दे वल।

पोर्टल शुरू हो चुका है। इस तो बाद विद्यार्थी अपने अंकों की वेरीफिकेशन या प्रश्न वार पुनर मुलांकन लई अर्जी जिहड़े आ उह दे चुके ने ते विद्यार्थियों नूं सलाह दित्ती जांदी है कि बोर्ड के इस अधिकारी ते जानकारी ते नज़र बनाई रखन ते किसी भी समस्या की स्थिति दे विच तुरंत बोर्ड के नाल संपर्क जिहड़ा उह अपना बनाई रखन ताकि उन्हां दे चेहरियां की मुस्कान हमेशा बनी रहे। हुण इसे दे नाल अज दा सोनी सवेर प्रोग्राम मैनू पूजा हांडा नूं इत्थे ही खत्म करन की इजाज़त दे दिओ। नमस्कार।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, 8:15 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
3: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
4: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
3: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
5: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीला

0: लाभपन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है।

0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजरायल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजरायल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पांचवी पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR, दिल्ली की मुख्यमंत्री

0: रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
3: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारण का गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
2: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our Mumbai correspondent.
4: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed.

यादविंद्रा सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम च खेडिया जाएगा। अफगानिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच 2018 विच भारत खिलाफ खेडिया सी। मैच सवेरे 9:30 बजे शुरू होगा। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल विच भारत का मुकाबला अज शामी 6:30 बजे बंगलादेश नाल होगा। तो आखिर च खास खबर एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आलमी आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप नाल मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। खेतीबाड़ी मंत्रालय ने कहा, संतुलित खादों की वरतों से पायदार खेती लिए 9,42,000 तो वध किसान खेत बचाओ अभियान शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थाई मैंबरशिप की दुरवरतों करने पाकिस्तान की निंदा की। शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे शतरंज का खिताब जीत के इतिहास रचा। इस राष्ट्रीय खबर का यह बुलेटिन खत्म होंगे। प्रदेशक खबर का अगला बुलेटिन सुनोगे दोपहर 1:10। नमस्कार।

0: में एक प्रोग्राम सुना, धरती की पुकार,
1: जी
0: वो बहुत अच्छा था। अगे सारे प्रोग्राम्स का जिक्र कर देने कि रंगली धरती, झांझरां दी बोर वास्ते, विड़े चिट्ठियां मिठियां, गुरबाणी विचार, सारे प्रोग्राम बहुत ही चंगे लगते ने। ते तुसी खादा जवाब दिंदे हो तां सानू चंगा लगदा है। तुहाडे कहिंदे आकाशवाणी जलंधर तों इक वारी नाटक सुनिया सी
1: जी
0: धरती दी पुकार,
1: जी
0: दोबारा सुनाया जाए।
1: सब तो पहला तो असी मिस्त्री राम सिंह होरां दा नहर दे किनारे पिंड फत्तेवाली तो एक खत लिखण वास्ते बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी। दो खत सीगे इन्हां दे,
0: एक
1: एक
0: होर
1: खत
0: है
1: इन्हां
0: जी,
1: ने, एक होर
0: एक
1: हैगा।
0: होर है।
1: अच्छा जी, चलो मैं फिर 1 मिनट तुसीं इहनूं होल्ड ते पा रखो,
0: ठीक है
1: मैं पहला इन्हां दे जवाब दे दिया क्योंकि मैनूं गल भुल ना जावे कितें, है ना।
0: जी।
1: पहला खत इन्हां ने लिखा जी हिंदी दे विच, और दूजा खत लिखा अंग्रेजी दे विच। हाँ, पिंड फत्तेवाली पंजाबी च लिखा होया।
0: जी
1: सो सुन के, समझ के, देख के बड़ा मजा आया। थोड़े नहर किनारे पिंड वालों ठंडिया ठंडिया हवावां भी सानू आ गई। शिकायत इन्हां दी ये सी जी कि पिछले प्रोग्राम च इन्हां दा खत अखीर विच पढ़िया गया, जिहड़ा कि चंगी गल नहीं है। ये उही गल हुई पूनम जी भी फिल्म दी शुरुआत यानी पहली रील जिहड़ी हुंदी है और अखीरली रील जिहड़ी क्लाइमैक्स हुंदी है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण हुंदियां ने, बहुत
0: जी
1: इंपॉर्टेंट हुंदियां ने,
0: जी
1: है ना।
0: जी
1: तो इन्हां नूं आखिरी रील चंगी क्यों नहीं लगदी, ये नहीं समझ आई। पर पता नहीं क्यों अचानक ये देखो कि ये वाला इन्हां दा खत एन प्रोग्राम दे अद्ध विचकार शुरू होया। जो तुसी पढ़ना शुरू कीता सी ना, ते
0: जी
1: प्रोग्राम दे पूरे 15 मिनट बीत चुके सीगे। सो बिल्कुल अद्ध विच होया, कुदरती
0: जी
1: तौर ते इन्हां दी शिकायत
0: कुदरती
1: जिहड़ी
0: तौर
1: सी
0: पे
1: वो दूर हो गई।
0: जी
1: दूसरा, इन्हां ने कुछ प्रोग्रामां दा जिक्र कीता, प्रोग्राम पसंद भी कीते, उहदे वास्ते असीं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदे हां जी। प्रोग्राम जिहड़ा है शुरू तों लै के अंत तक ही रोचक हुंदा है, भावें खत शुरू च आ जाए, भावें विचकार आ जाए, भावें पिछे आ जाए। रेल गड्डी दा आखिरी डब्बा कोई ना कोई तो होना ही हुंदा है ना
0: बिल्कुल, कोई ना कोई
1: जी।
0: तो होना ही होंदा है।
1: जी
0: अगले दिन है कि 20/9/25, बड़ा पुराना खत है जी।
1: अच्छा जी
0: असी 9:30 बजे खतां दे जवाब सुने, तुहाडी चिट्ठी मिली, प्रोग्राम विच बहुत वधिया लगे।
1: जी
0: उस तो बाद असी खत अच्छा लिख देने कि उदो पहली बार प्रोग्राम सुनिया सी इन्हां
1: अच्छा
0: ने।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: उस तो बाद इन्हां ने खत पाउणा शुरू कीता,
1: जी
0: ते तुहाडियां मिठियां आवाज़ां ने खत पाउण दे लई सानू ताकत दित्ती, कलम दित्ती, ते असी खत लिखना शुरू कीता। साड़ी मजबूरी सी कि असी खत पा नहीं सके काफ़ी लंबे समय ते, पर हुण असी रोज़ाना खत पा रहे हैं, प्रोग्राम बहुत चंगे लग रहे ने। तुसी कहिंदे कि साडा सुझाव है कि चुटकलियां ते आधारित भी कोई प्रोग्राम पेश किया जाए।
1: जी अजिहे प्रोग्राम साढ़े आकाशवाणी FM रेनबो चैनल जिहड़ा है साडा आकाशवाणी जलंधर दा, उहदे ते चल रहे ने जिहड़े लाइटर वेन दे प्रोग्राम ने, हल्के फुल्के प्रोग्राम ने जिन्हां च हसी मजाक और चुटकले भी पेश कीते जांदे ने, है ना।
0: जी
1: सो इह 3-3 खत लिखे इन्हां ने, असीं बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ जी इन्हां दे। जदों इन्हां ने 20/9/2025 लिखिया ना, तो मैनूं लग्गिया तुसीं वी गल कीती कि
0: खत
1: इन्ना पुराना
0: पुराना
1: खत
0: है
1: किवें
0: जी।
1: साडे कोल पहुँच गया। तो मेरे कोल तां इक गल आ गई मेरे दिमाग विच कि देखो जी, असीं अपने अपने दोस्तां नूं इह कह सकदे हां कि इन्ना पुराना खत भी साढ़े को आ जाए तो असं छड़ते नहीं, उन्होंने जरूर शामिल करते हैं। पर चलो, ये तो पता लग गया जी कि 20/9/25 इन्होंने
0: जी
1: पहली बार ये प्रोग्राम सुनिया। सो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मिस्त्री राम सिंह रूपाल जी। और क्योंकि 3 अलग अलग भाषावां दे विच तुहाडे खत सानू मिले ने, कोशिश करियो अगली वारी, क्योंकि ये प्रोग्राम पंजाबी दा है, अगली वारी तुसी भी फतेवाली पिंड पंजाबी च लिखिया होया,
0: जी
1: इस करके गुजारिश है जी कि अगली वारी तुसी पंजाबी दे विच या गुरमुखी दे विच सानू एक खत लिख के भेजना
0: बिल्कुल जी, क्योंकि तुसी पंजाबी लिख लैंदे हो,
1: जी।
0: इसलिए साड़ी अगली बार तो उम्मीद रहेगी
1: जी
0: कि तुसी किसी एक भाषा दे विच ही सानू प्रॉपर खत लिखो,
1: जी बिल्कुल
0: ते कोशिश होएगी जेकर पंजाबी च लिखोगे तो बहुत ही वधिया गल है।
1: जी
0: अगला खाता है चकला बाजार समाणा तो पप्पू राजा खुशदिल संगीता जिंदल ते साथियों का। 16/5 का तुहाडे चिट्ठी मिली प्रोग्राम जो तुसी पेश कीता सी, सोहन जी ते प्रभजोत जी ने बहुत चंगा पेश कीता। उसे दिन का हैलो फरमाइश पूजा हांडा जी ने चंगा पेश कीता। झांझरां दे बोर प्रोग्राम वास्ते वेड़े साड़ी बेनती है कि हैलो फरमाइश फोन दे नाल नाल खतां दे नाल भी शामिल कीता जावे। अगे लिखते ने कि 23/5 का तुहाडे चिट्ठी मिली प्रोग्राम पूनम जी वरमजीत जी ने पेश किया, साड़ी चिट्ठी शामिल नहीं की गई, बाकी इन्होंने प्रोग्रामां दी तारीफ की है जी।
1: वैसे तो पप्पू राजा खुशदिल जी, एक कहिए कि जिन्ने रंग बिरंगे पेन दे नाल तुसी ये चिट्ठियां लिखते हो, ये
0: जी
1: चिट्ठी कितने दूर भी पई होए तो अपना ध्यान खिंच लेगी अपने
0: जी
1: वाल, है ना।
0: बिल्कुल
1: इस
0: बिल्कुल
1: करके ये हो नहीं सकता कि थोड़ी चिट्ठी आई होवे ते शामिल ना की जा सकी होवे, थोड़ी चिट्ठी सानू नहीं मिली इस करके शामिल नहीं कर सके, इस वास्ते माफ़ी चाहवांगे। प्रोग्राम के शुरू च रामनाथ अतापुर होर ने जिहड़ी चिट्ठी लिखी सी ना, छोटी छोटी लिखाई दे विच, उदों कागज़ बचाउण दी गल चल रही सी।
0: जी
1: पप्पू राजा खुशदिल होरां ने खुले दिल नाल मोटे मोटे पेन दे नाल थोड़े जिहे अक्षर लिखे ने, इस करके इन्हां नूं गुजारिश कर दिंदे हां जी कि ये दो चिट्ठियां दा मसौदा इक्को चिट्ठी विच आ जांदा जे तुसीं साधारण पेन इस्तेमाल करके, ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: 2026 का 21, 22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
1: पर की उस दे लई मेनू दिल्ली जाना पाएगा?
0: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
1: अप्लाई किवें करिए?
0: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
1: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
2: असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। मीडिया वेब 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से हुन पेश है प्रोग्राम हैलो फरमाइश।

हेलो फरमाइश प्रोग्राम सुनने वालियां दी खिदमत विच पूजा हांडा दी प्यार भरी नमस्कार जी। दोस्तों, जीवन एक नदी दी तारा, हर पल एक नवा सितारा, खुशियां नाल हर दिन सजाइए, किसे दा दिल कदे ना दुखाइए, ये वक्त कदे मुड़ नहीं आना, हर रंग दे विच जीवन नू मनाउणा। बिल्कुल, असी भी नचदे टपदे इस प्रोग्राम दे विच तुहाडियां फरमाइशां दे नाल तुहाडे गीत नू सुनाउणा है, तुहाडे तक पहुँचाउणा है। 01812342173 नंबर नू डायल करके जद तुसी साडे इस प्रोग्राम दे विच आउणा है। ते प्रोग्राम दी शुरुआत बिल्कुल कर दित्ती है हीर एक्सप्रैस फिल्म दे विचों लए, नक्श अजीज़ दे आवाज़ दे विच गाए इस खूबसूरत गीत दे नाल।

0: ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ 0181 23 42 173 ਨੰਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ
1: ਹੈਲੋ
0: ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ।
1: ਨਮਸਤੇ ਮੈਮ,
0: ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ?
1: नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ।
0: नंदिनी जी, की हाल चाल है?
1: बढ़िया हूँ, और आप कैसी हैं?
0: जी मैं भी बहुत बढ़िया है।
1: जी, तो आज मुझे गाना सुनना है, मूवी का नाम है तुम बिन। सॉन्ग है छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं।
0: जी, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल दी आवाजों दे विच गाया हुआ गीत तुहानू जरूर सुनावांगे। इस वेले की कर रहे सी?
1: आपको
0: ओहो, थैंक यू जी।
1: और मेरी सिस्टर रानू दीदी को।
0: हाँ बिल्कुल जी
1: जी, नंदिनी बहुत दिन बाद बात हुई ना तुम्हारी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, की कर रहे सी इस वेले?
1: कुछ नहीं, बस अभी फ्री हुए थे तो हमने अभी ट्राई किया तो मेरा कॉल लग गया।
0: लकी दिन है अज दा, है ना जी? तुसी कोशिश कीती है, नंबर डायल कीता है ते नाल ही लग गया, ते हुन सानू तुसी गीत दस्या।
1: मैंने ना अभी फ्री हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा करूं।
0: चलो तुसी सानू गीत दस्या ते तुहाडे तक गीत भी बिल्कुल जी पहुंच गया।
1: ओके,
0: शुक्रिया कॉल करन दे लई जी।
1: नमस्ते।
0: मस्त जी।

0: करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोलना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में ये घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान के साथ खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर पूर्वी भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स दे ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र ए। आओ हुन सुनदे आ प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी। ते उस तो पहला कि असी अपने व्हाट्सएप मैसेज सुनिए, आओ सुनते हैं सतिंदर सरदार की आवाज़ विच एक गीत उल्फत दा शेर।

प्रोग्राम चल रहा है जी, धमक जलंधर पैंदी। तो साढ़े इस प्रोग्राम च सानू कई सारे स्रोतिया ने वट्सएप मैसेज किए ने ते अपनी फरमाइश की है कि वह किहड़े गीत सुनना चाहते हैं। तुसी भी सानू इस नंबर ते वट्सएप कर सकते हो। नंबर है जी 94।

प्रोग्राम चल रहा है जी धमक जलंधर पैंदी ते इस प्रोग्राम च अगला मैसेज आया है गंज रुडवारा तो शमसुल कमर अंसा राही शाहीन फातिमा अदनान खान फैजान खान अनु खान उस्मान अंसारी अते कलीम अंसारी दा। अगला मैसेज है जी मोताला महाराष्ट्र तो विजय सुरलकर रत्नामाला अते ओम कुमार। अगले साथी ने आर्यनगर कोहका भिलाई तो उत्तम सिंह जंगेल मोरस जंगेल अनिल कुमार अजित कुमार आयुष जंगेल अते नंदनी जंगेल। दमधा ग्राम सुखरी कला तो अमित जंगेल शंकुन जंगेल आरुषि ओशिका आदित्य जंगेल अते अंजलि जंगेल। ते अगले साथी ने गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा तो राधेश्याम शर्मा इंदिरा शर्मा सार्थक शर्मा अते यश वशिष्ठ। शुभलता प्रेम सागर ये लिखते हैं जी खजाना गेट अमृतसर तो पिंड ककराली जिला पंचकुला तो वेद प्रकाश प्रजापति लक्ष्य एंजल नेहा अंजलि गुरमीत कौर शुभम लवली प्रजापति। अगला मैसेज है जी महाराष्ट्र तो संतोष खटसे ते विनोद खटसे। अगले साथी ने जसवंत सिंह एकम मनकीरत जंड मनकीरत जंडवाला मीरा सागला फाजिलका तो जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो लिखते ने मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान इरफान इसरार अते नरगिस खातून। ते अगले साथी ने रजाक मोहम्मद समीम बेगम इमरान खान अते इरफान खान हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान तो। अगला मैसेज आया जी सुखदेव कलेर नरेश कलेर संतोष रानी पूजा रानी पुनीत निगाह शुभदीप शुभदीप कलेर दा बलाचौर तो। अगले साथी ने विनय मोहन खारवन मीनाक्षी प्लोमा अते डॉक्टर ईशानी ये लिखते ने जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा तो। अगले साथी ने जीटीपी मार्केट अहमदगढ़ मंडी तो मोहम्मद अनवर अंसारी रवीना आफिया सना समा हीना शकीला जैस्मिन रजिया सुल्ताना अख्तर अंसारी सुराज अते मोहम्मद जावेद अंसारी। अगला मैसेज आया जी मॉडल टाउन करनाल तो सुधीर नूतन संदीप गुगलानी जगमोहन प्रजापति प्रतिभा शर्मा ते इशप्रीत शर्मा दा। अगले साथी ने पिंड तेजा मोहड़ी अंबाला तो बंशीलाल संधू कबीर अते जेसवीर संधू वरनीत ते पवनीत कौर। रघुवीर नगर तो लिखते ने दिलावर खान हसीना बानो एलिजा नायाब।

ते लड्डू। सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना, एस के पप्पी ये लिखते ने एमएलबी रोड ग्वालियर तो, पिंट डाकखाना खोया सरवर तो लिखते ने फाजिलका तो, रिजू बब्बू वीहू चावला, हेजल विहान चावला, दीपक रमेश चावला, हेमंत आस्था, जयश्री संतोष चावला। अगला मैसेज है जी, कांता किरणा रीना लड्डी जसवाल मधु कृति राधु प्रिंस जसवाल दवीना पिंड अगमपुर। ते नाल ही अगला मैसेज आया जी, बीरबल राणा, नरेश रानी, रजनी, साहिल रानी, राहुल राणा, चोटला खुर्द तो, श्रीगंगानगर तो लिखते ने जगमोहन सिंह अरनेजा, बलजरंग शर्मा, सोनू मिंटू, करण हरगुन, गुरदास मानदी, आवाज़ चगी सुनना चाहते ने, जरूर सुनावांगे जी। ते अगला मैसेज है पिंड उगाला जिला अंबाला हरियाणा तो, राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन। अते अगला मैसेज लिखते ने जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा तो, विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा, दुर्गा कलोनी हांसी तो, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू अते बब्बू। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद आ प्रोग्राम दा अगला गीत सुनते हैं। इस गीत नू आवाज़ दिती है गुरदास मान ने।

प्रोग्राम चल रहा है जी धमक जलंधर पैंदी। तो इस प्रोग्राम च अगला मैसेज लैने जी। यह मैसेज आया है दुर्गा कलोनी हांसी तो राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, टब्बू अते बब्बू दा। ते अगला मैसेज लिखते ने लखनऊ उत्तर प्रदेश तो मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख अते अमन आफरीदी। अगले साथी ने चकला बाजार समाना शहर तो पप्पू राजा, फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांधा, इंदरजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, बलविंदर सोडी, चंडीगढ़ तो यश कुमार वर्मा, सरबजीत सिंह, परमिंदर सूद, मन्नत ये लिखते ने माछीवाड़ा साहिब जिला लुधियाना तो। लोहारू हरियाणा तो लिखते ने बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार। पंचकुला तो लिखते ने आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान ते राधे भविक ढींगरा। अगले साथी ने रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान तो लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। पिंड खाने की दवा तहसील मलोड़ तो लिखते ने मनप्रीत सिंह, राम सिंह, गुरविंदर कौर अते इंदर सिंह। गिदड़बाह तो लिखते ने मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल, निताशा अते हिनाशा तनेजा। पदमपुर तो भगवान दास तनेजा, पवन कुमार, योगेश तनेजा, आस्था तनेजा, मोहित मक्कड़, मुखी राम जी अते मनजीत तनेजा ते पूजा। गुरदासपुर तो मैसेज आया जी प्रीतम दास, सत्या देवी, वानिया अते अरमान दा। अवितास लिखते ने कैनेडा तो ते दैविक अंगुराना, विहान ते रिहाना। ते नाल ही अगला मैसेज है जी बाजवा कलोनी गुरदासपुर तो प्रीतम चंद, अनमोल, दीपक, डाबकी रोड अकोला तो सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर अते कुमार गौरव मंदूरकर। पुरानी मंडी मुल्लापुर तो लिखते ने रमेश कालरा, प्रेम, इंदर

कृष्ण गोपाल शर्मा, माधो माधोराम शर्मा, जंग बहादुर राव, संजीव जैन, राजेश जैन, नगीना जैन, तालू राम बंसल, संदीप संधू। अगले साथी ने गांव खखा तहसील हिंदू मलकोट तो भंवर लाल। अगला मैसेज आया जी हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया ते पप्पी भाटिया दा जमशेदपुर तो। अगली फरमाइश है मुक्सर तो राहुल नागपाल दी। ते अगले साथी ने फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांधा, इंदरजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, बलविंदर सोडी, चंडीगढ़ तो यश कुमार वर्मा। हनुमानगढ़ फाजिलका तो लिखते ने रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा। पिंड बसौली नेड़े लालरू मंडी तो सूबेदार साधु सिंह भट्टी, आरव भट्टी, सकीला भट्टी, कुलवंत काला ते तीनू भट्टी। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे हां कलेर कंठ दी आवाज़ विच।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: देखते हैं जी प्रोग्राम च अगला मैसेज हुन किदा आया जी। अगला मैसेज लिखते ने जगराओं तो दर्शन जैन, प्रेमचंद जैन, शोभरा जैन, सत्यपाल जैन, मोनू जैन, परवश जैन, जवाहर जैन, सुखबीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोमनप्रीत सिंह, पिंड छाजली, जिला संगरूर तो। अगले साथी ने खैल बाजार पानीपत तो नरेश मल्होत्रा, नीतू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कलोनी रोहतक तो पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का। अगले साथी ने पिंड मोलनवाल तो मास्टर मनसब अली, नंबरदार चौधरी, अली शेर, अहमद बिलाल, उस्मान तकरीर, शान तकीर, हसन तनवीर ते AS सग्गू। अगले साथी ने गांव जोगीवाला श्री गंगानगर तो प्रेम सहारन, मोनिका, मनीष सहारन, फाजिलका तो भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, तिवांशी खेड़ा, जलालाबाद पछमी तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी अते निमित अहूजा। मोहाली तो लिखते ने अमनदीप सिंह सैनी, लाभ कौर सैनी, जीवन ज्योत कौर सैनी अते नीदम सैनी कैनेडा तो, बलकार सिंह बद्दन, अर्शदीप सिंह बद्दन, विजय कुमार कौंडल, सोनू, प्रीतम सिंह, कुम्यार देवी माता मंदिर हाजीपुर तो लिखते ने। श्री तरन तारण साहिब तो दलजीत सिंह, हरजिंदर सिंह, फटाफट सोनिया, डॉक्टर रेनू, अमनप्रीत अते अमृतपाल, अलीगढ़ तहसील डबवाली तो रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत, सरबजीत, रानी, सोनू अते रजनी, दादा बाबू रोड गिरहीर झारखंड तो मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिर्फा नाज अते बेबी चाहत। अगले साथी ने मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना तो विनोदपुरी, VP रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, BK पुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पलीपुरी, सुनील पाठक अते VK पुरी। चंडीगढ़ तो निश्चल ऋषि, संजू ऋषि, सौरव ऋषि, कृतिका लड्डू, अमरजीत, नीलम, राहुल अते ऋषिका ऋषि। अगले साथी ने परमजीत पुरबा, कक्कड़वाल पुल धूरी तो बिंदर खेड़ी, करमजीत बमाल, मिंटू सप्पल, अमरीक जलान, रमन अते प्रिंस। जारला टाउन SBS नगर तो लिखते ने विनोद संधु, कमल संधु, रितिश संधु, आकांक्षा संधु अते भरत भूषण संधु। बलविंदर सरा, गुंतास, रमनदीप, मनिंदर सरा, पिंड मोरजट सिखा, हनुमानगढ़, रिम्पी सिंह, पाल सिंह, सलीम खान, तनवीर कौर, पिंड पहेड़ी, जिला अमलो, जिला फतेहगढ़ साहिब तो। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर है जी बब्बू मान दी आवाज़ विच।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया।

मामलूवाड़ी महाराष्ट्र तो सोपान तायड़े वसंतराव भोजने पीएस नहावकर तुषार करांगले गांव खारा खेड़ा वार्ड नंबर 13 तो जिला हनुमानगढ़ संगरिया राजस्थान तो लिखते ने हरबंस सिंह जगनदीप सिंह गुरदीप सिंह मलकीत कौर रमेश चंद्र चौहान जय नारायण चौहान तरुण चौहान प्रतीक चौहान ए लिखते ने जी राजस्थान दे बिलवाड़ा तो कृष्ण लाल राजू दीपू शीतल शारदा विवान गोपाल पिंड मक्खनपुर बिश्ना जम्मू तो अगले साथी ने मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलवीर सिंह जिला मुरादाबाद पिंड दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो अगली फरमाइश आई है जी आशा नारंग सोनाली सुरेश नारंग दी सहारनपुर तो अगले साथी ने जिला रोपड़ पिंड भक्कू माजरा तो सुरिंदर ननुआ कुलवंत ननुआ सुखजोत भूपिंदर अते मनजोत ननुआ अगले साथी ने नरगौड़ा छत्तीसगढ़ तो महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी अते दिशा गोस्वामी अगले साथी ने धमक जलंधर पैंदी च लिखण वाले राजकुमार दूधी प्रमोद कुमार दूधी पुष्पेंद्र कुमार दूधी गांव फ्रांसी हिसार तो गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब तो लिखते ने गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शम्मी रजनी आकाशदीप अनहद अते गुरशब्द पटेल नगर मलोट तो लिखते ने डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया आरजू जाजोरिया ते गुड्डू संदीप कुमार लिखते ने जी फाजिलका तो इन्हों के नाल ने गोबिंद सिरोए कुमकुम सिरोए अते संजना सिरोए उत्तम नगर दिल्ली तो बोधराज खोरवाल कमला रानी गीतिका खोरवाल अते भानु प्रकाश पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा अते भूमिका अरोड़ा पीर बन्ना बनोई रोड सुनाम तो दलजीत चीमा मनदीप चीमा राजदीप चीमा बलराज चीमा राणी डाली ते सिफत जोत सरा पिंड बिल्ली मार तो प्रेम कुमार परवीन रानी अलीसा अरमान राकेश कुमार ममता रानी गमहरिया जमशेदपुर तो बिपिन जायसवाल स्वाति जायसवाल देव कुमार जायसवाल अते आर्य कुमार जायसवाल अनिल बिश्नोई मोनिका अजय सिंह सुषमा शेफाली रिजाम शशि अर्पित अभिनव सत्य कन्नू रोहिणी सत्या आशना दीक्षा अर्पित शशि बिश्नोई हरिपुरा अबोहर तो ते पंचकुला तो लिखते ने करमवीर सिंह पॉल ते पूरा परिवार लिखते ने जी जलंधर तो पिंड चांदमरी तो लिखते ने मंगत राम जगदीश रानी संदीप मिद्धा ममता रानी अभिषेक मिद्धा ते दिव्या आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद का प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हाँ सुरजीत बिंद्रखिया की आवाज़ में।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM 103.6 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में

0: व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में यह घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र ए। आओ हुन सुनदे आं प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार।
1: प्रोग्राम वसदी वेड़े लैके हाजिर है जी तुहाडी अपनी दोस्त अनुराधा।
0: और प्रोग्राम वसदी वेड़े लैके ज्योति भी हाजिर है जी। अनुराधा, की हाल चाल है?
1: हाल चाल ज्योति जी, देखो मैं जदों पसीना पहुँच रही सी आ के, तो तुसीं पूछा कि बड़ी गर्मी है ना देखो मौसम तो गर्मी का है ही है, पर गल यह है कि मौसम तो जड़े ने कुदरत का नियम है, आते जाते रहते ने, पर गल यह होंगी है कि इन्होंने मौसमों के असी अपने आप को किस तरह बचाना है, महफूज किस तरह रखना है, ये बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो भैन सफाई कर दया ने घर की, जदों तो असं भैनों यही कहेंगे भी ठंडे ठंडे जोड़ा है साफ सफाई का काम घर ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੂੰਝ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ,
0: ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ

0: जी
1: कदी के ताई खाओ तो इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ तुहानू इन इंग्रीडियंट्स बारे पता होना चाहिए। और अजकल मोस्टली अजकल दे टाइम ते की हो गया, तुसी किसी भी वधिया रेस्टोरेंट ते खान जाओगे तुहानू इन इंग्रीडियंट जिहड़े भी वो तुहानू मेन्यू देंदे उहदे विच अजकल तुहानू नाल नाल इन इंग्रीडियंट्स भी दित्ते जांदे आ। तुसी ऑनलाइन कितें भी ऑर्डर करदे हो तुहानू ये सब चीज़ां देखण नूं मिलदियां है। लेकिन उही मैं तुहानू गल कह रही हाँ कि अपनियां अक्खां खोल के हर चीज़ की वरतों करो
0: बिल्कुल। कई बार
1: जी।
0: किसी नूं कोई खास समस्या हुंदी है डायबिटीज़ दी या फिर इस तरह की कोई समस्या, पर उसनों यह नहीं पता हुंदा कि जो कोल्ड ड्रिंक या कोई चीज़ वो लै रहा है उसके विच किन्नी मात्रा दे विच शुगर है, तो फायदे की बजाय स्वाद की बजाय वह खतरनाक भी साबित हो जाती है। हुण जदों असी खाना प्रिजर्व करन की गल करते हैं, संभालण की गल करते हैं, तो तुसी आप साढ़े श्रोतों नूं की दसना चाहोगे कि प्रिजर्व असी किवें कर सकते हैं?
1: देखो जी, बहुत वड्डी गल है कि खाने नूं असीं प्रिजर्व किवें करना है।
0: जी
1: इत्थे बहुत सारे मैथड हैगे आ, केमिकल मैथड्स हैगे आ प्रिजर्वेशन नूं, प्रिजर्वेशन करन दे लिए रेफ्रिजरेशन मैथड हैगा आ। ठीक है, जिवें कि आपां खाने नूं जदों भी बना रहे हाँ उहनूं 2 घंटे दे दरम्यान जां तां तुसीं उहनूं खा लो। जे तुहाडा खाना बच जाँदा आ 2 घंटे बाद तुसीं उहनूं फ्रिज 'च स्टोर कर सकदे हो, लेकिन फ्रिज दा जिहड़ा टैंपरेचर आ उह 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जां उस तों बिलो होणा चाहीदा। उस तों अबव करोगे तां उहदे विच बैक्टीरियल जिहड़ी ग्रोथ वो होर ज़्यादा वध जाएगी। ठीक है, दूसरा अपना जिहड़ा खाना हैगा आ ते उहनूं कूल प्लेस से प्रिजर्वेशन करो।
0: जी
1: ते ठीक है, जिहड़ा तुहाडा पुराना स्टॉक आ पुराने स्टॉक नूं पहला यूज़ करो, ते जिहड़ा नवा स्टॉक आ उहनूं बाद विच यूज़ करो। जिहड़े तुहाडे सुक्के फल आ, कोई भी सुक्कियां चीज़ां आ, जिहड़ियां सब्जियां फ्रिज 'च पईआं आ, फ्रूट्स पए आ, सुक्कियां नूं साइड ते रखो। जो भी गिल्ला तुहाडा स्टॉक आ पानी वाला आ उसनूं साइड ते करो। सो
0: जी
1: प्रिजर्वेशन दे नाल तुसीं बहुत सारियां बीमारियां तों बच सकदे हो, प्लस तुहाडे जिन्ने भी फूड जां वैजीटेबल्स दे विच वाइटामिनस मिनरल्स आ तुसीं उस दी गुणवत्ता नूं भी वधा सकदे हो।
0: जो असी खाना प्रिजर्व करते हैं खास तौर पर फ्रिज के रखते हैं, तो फिर असी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक के किसी भी कंटेनर के खाने लंबे समय के लिए स्टोर करके रखना की खतरनाक साबित हो सकता है?
1: बिल्कुल खतरनाक है जी। सानू जां तां एयर टाइट कंटेनर जां तां तुहाडे कच्च दे होण जां स्टील दे होण बाउल,
0: जी
1: लेकिन प्लास्टिक दे लई उसनू नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक अगेन तैनू बहुत सारिया बीमारियां दे रही आ।
0: बिल्कुल
1: तुसी उहनू फ्रिज 'च रखदे हो, ठंडा हो रहा, फिर वो बाहर जा रहा, फिर गर्म हो रहा, टैंपरेचर का बहुत इशू हो जाता, और उस नाल ही सानू बहुत सारिया दिक्कत अगे आ जाएँ।
0: जी डॉक्टर नवजोत जी, जो असं खाना फ्रिज रखते हैं तो कई बार असं बड़ी देर भी रख लें, तो कई बार इस तरह भी होंगे कि कोई खास सब्जी या फ्रूट या कोई इस तरह के जूसेस असी जो किसी खास मौसम के होंगे ने उसको एडवांस के असं बचा के रखना चाहते हैं, जिमें कि असी मटर ही कह लीए, किन्ने समय के लिए उसू असी मानते हैं कि सेफ है फ्रिज के खाना रखना?
1: ठीक है जी, ये चीज़ां डिपेंड करदियां फूड दी परशेबिलिटी ते, परशेबिलिटी तो भाव कि उसकी म्याद दर की है। ठीक है
0: जी
1: जी, इसनों आपां 3 भागां 'च वंडदे हाँ परशेबिलिटी नूं। एक तो अपने सैमी परशेबल फूड हुंदे आ, जिवें अपनियां वैजीटेबल्स हो गईयां, कुछ अपने फ्रूट्स हो गए जिहड़े आपां नूं बाहर रूम टैंपरेचर ते ही रखने हुंदे आ।
0: जी
1: ठीक है जी, दूसरे अपने हो गए आ जी परशेबल, परशेबल फूड आइटम्स हो गईयां, जिवें तुहाडे परशेबल दे विच हो गईयां दालां हो गईयां, अनाज हो गए, ठीक है, तुहाडे आटा हो गया, इन्हां नूं तुसीं बाहर रूम टैंपरेचर ते रख सकदे हो।
0: जी
1: ठीक है, दूसरा होंदा हाईली परशिएबल फूड हो गया, जिवें अपने दुध हो गया, चिकन हो गया, ठीक है ना, ये बहुत जल्दी खराब आइटम्स हो जाती हैं। ठीक है, जे आपां मान लो फ्रिज दे विच इहनूं स्टोर करदे हाँ ते आपां इहनूं जिहड़ियां इदां दियां चीज़ां हो गईयां, दुध हो गया, तो चलो जी 1 या 2 दिन वास्ते इहनूं स्टोर करके रख सकते हाँ, क्योंकि इहनूं अगले दिन भी वरत्या जा सकता है। बट
0: जी
1: कुछ आइटम्स इदां दियां हो गईयां आ जिवें तुसीं मटर की गल की है, जे तो उहनूं आपां स्टोर करके रेफ्रिजरेट करके रखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पर रखते हैं, तो मेरे हिसाब के नाल उहनूं तुसीं 6 महीने भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तुसीं देखिया होगा कोल्ड स्टोरेज के विच भी बहुत सारियां जिवें आलू हो गए, जिवें तुसीं सीजनल दे विच देख लो, दिसंबर दे विच भी तुहानूं मैंगो या भिंडियां मिलूंगियां।
0: बिल्कुल
1: देखो नॉन सीजनल चीज़ां हैगियां, लेकिन वो किद्दां प्रिजर्व हो रही हैं कोल्ड स्टोरेज के विच, स्टोरेज के विच वो चीज़ां सेव होंदियां, और तुहानूं वो बेमौसमी चीज़ां तुहानूं खाण लई मिल रही आ, इस करके उसनों तुसीं ज़्यादा देर तक रख सकते हो।
0: जी हुण तुसीं कोल्ड स्टोरेज की गल की है, तुसीं ये भी कहा कि उस दे विच किसी खास टैंपरेचर दे विच उसनूं स्टोर किया जाता है, सेफ रखा जाता है, इसलिए वो सेफ हो सकदियां ने। पर नाल ही बीइंग डाइटिशियन तुसीं ये भी दसो कि मौसमी फल सब्जियां खानियां ते स्टोरेज दियां चीज़ां खानियां, इन्हां दोनों च की फर्क है?
1: देखो जी, बहुत ज़्यादा फर्क है। जे तुसी मौसमी चीज़ां खा रहे हो उहदे विच तुहानूं ज़्यादा वाइटामिनस, ज़्यादा तुहानूं उहदे विच इम्यूनिटी बूस्टर्स मिलणगे, मिनरल्स ज़्यादा मिलणगे।
0: जी
1: बेमौसमी चीज़ां खाओ ते एक तां उहनूं तुहाडा कोई स्वाद नहीं आना, ते ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋਈ।

0: जी अनुराधा, श्रोते अपने मनपसंद दे गीत सुन रहे ने, और देखो किन्नी गर्मी दे विचों सानू एक खत पहला लै के आउंदे ने और फिर लिखदे ने बड़े प्यार दे नाल और फिर साडे तक पहुंचदे ने।
1: जी
0: और अगली फरमाइश भी जल्दी जल्दी पढ़ दिंदे आ, जो कि आई है प्रकाश कौर दे गाए गीत लई। पिंड ककमौर माजरा जिला कैथल हरियाणा तो रमेश कुमार लोट, संतोष राणी, अंकुश लोट, अंकिता लोट ते छोटा बच्चा अनुज लोट। बाजवा कलोनी पटियाला तो सत्रोहन, कृष्ण कुमार, रवि कुमार, विशाल, दिमांशी, आलिया, पूनम, रिनू ते पार्वती।
1: जी इसे गीत की फरमाइश सानू भेजी है जी बागा पुराणा तो सतनाम सिंह रखरा, अमरजीत कौर रखरा, तेग फतेह सिंह रखरा, जसगुण रखरा ते इन्हों का पूरा परिवार। बस अड्डा हाजीपुर तो सोनू, बाली, लाली, जीवन, बिट्टू, बाला जी, ठाकुर, विजय कुमार ते प्यारे लाल जी। ते आओ सुनते हैं इन्होंने सारे की फरमाइश ते एक गीत।

0: जी अनुराधा, अगली ते आखरी फरमाइश जिहड़ी है ओह वी पढ़ दिंदे आ।
1: जी बिल्कुल, साडे कोल जिहड़ी अगली फरमाइश आई है ओ एन जी आशा भोंसले ते चन्नी सिंह दे गाए हुए गीत दी फरमाइश सानूं भेजी है जी।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जाँच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश है साडे अज प्रसारित किते जाण वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

4:02 से सुनना प्रोग्राम खेड संसार। शाम 4:30 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे ते 5:30 सरवण करना साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार।

7:10 होवेगा प्रोग्राम युवा शक्ति। सात बज के 45 सुन सकोगे साहित्य सुधा। अज इस विच तुसी संस्कृत साहित्य विच वनस्पति पूजन संबंधी डॉक्टर सलोनी भारद्वाज तो जानकारी हासिल कर सकोगे।

7:55 ते सुन सकोगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे। सवा 8 बजे प्रोग्राम होवेगा सुर सरिता। अज इस विच तुसी अजीत कौर दे गाए गीत सुन सकोगे। रात 8:45 ते सुनना समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 साहित्य भारती ते 10 बजे संगीत दा अखिल भारती प्रोग्राम साढ़े दिल्ली केंद्र तो। अज इस विच तुसी ऋषिकेश गागोड़दा तो शास्त्री गायन च सुन सकोगे ख्याल।

0: मीडियम वेव 348.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले दोपहर दे 1:10 हो रहे ने। आओ हुण सुनदे हां प्रादेशिक खबरां।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी गुरविंदर सिंह सोहता तो प्रादेशिक खबरां सुनो। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पंजाब के राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया नाल चंडीगढ़ विखे मुलाकात की। इस दौरान दोवां ने पंजाब चंडीगढ़ दिल्ली ते राष्ट्रीय महत्व के वख-वख मुद्दों ते व्यापक चर्चा की। नौजवानों खास करके सरहदी खेत्र के लोगों नूं हुनर विकास प्रोग्रामां नाल प्रभावशाली ढंग नाल जोड़न बारे भी व्यापक गलबात हुई। दोवां शख्सियतों ने 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण प्राप्त करने लई युवा सशक्तिकरण ते हुनर विकास नूं महत्वपूर्ण थंब दस्या ते इस दिशा विच निरंतर यत्नां दी जरूरत ते जोर दित्ता। फिरोजपुर विच अज सवेरे फिरोजपुर फाजिलका सड़क ते एक वाहन ते ट्रक नाल टकरा जाण कारण घट्टो घट 9 लोगों की मौत हो गई जदकि 22 होर जख्मी हो गए ने। ये सारे परिवारक मैंबर सन ते ब्यास दरिया विच किसी मृतक रिश्तेदार दीआं अस्थियां जल प्रवाह करन लई ब्यास जा रहे सन। हादसे दौरान कईयां दी मौके ते ही मौत हो गई जदकि जख्मियों नूं फिरोजपुर सिविल हस्पताल ते फरीदकोट मैडिकल कॉलेज विखे भर्ती करवाया गया है। पुलिस सूत्रां ने आकाशवाणी नूं दस्सिया कि जख्मी 22 लोगों विचों कईयां दी हालत गंभीर है। हादसे तों बाद मौके ते पहुंचे सीनियर पुलिस अधिकारियों ने स्थानक निवासियों की सहायता नाल बचाव कार्य शुरू किए ते जख्मियों नूं स्थानक हस्पताल विच भर्ती करवाया। पंजाब के कर विभाग ने टैक्स चोरी ते कार्रवाई करदिआं 200 तो वध वाहनों की जांच दौरान लगभग 7 करोड़ रुपए का माल जब्त किया है। इस बारे आबकारी ते कार मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने दस्सिया कि यह कार्रवाई मुख्य तौर पर मंडी गोबिंदगढ़ खन्ना ते आस पास के इलाकों में की गई। इस कार्रवाई दौरान लोहे का स्क्रैप ते स्टील का माल लैके जा

फौजी वीरो जय हिंद। मैं निधि चुग लैके हाजिर हाँ जी तुहाडे लई फिल्मी गीतां दा ए प्रोग्राम। ते गीतां दी शुरुआत करदे हां पहले गीत दे नाल जिसनों आवाज़ दिती है अरिजीत सिंह ने। फिल्म दा नाम है ब्रह्मास्त्र।

फौजी विरोह प्रोग्राम च अगला गीत सुनते हाँ, फिल्म अमर सिंह चमकीला दा। इस गीत नू आवाज़ दिती है ए आर रहमान ते कैलाश खेर ने।

फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत हाजिर है फिल्म फिलोरिडा। इस गीत नूं आवाज दिती है रोमी विवेक अते हरिहरन ने।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा। लड़ीवार
0: नाटक होया

0: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज शाम नवी दिल्ली विच नेपाल दे विदेश मंत्री शिशिर खनाल नाल गलबात करनगे। नेपाल दे विदेश मंत्रालय ने कहा कि मीटिंग दौरान दोवें धिरां व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा ते लोकां ते लोकां दे संबंधां समेत मुख खेतरां विच सहयोग वधाउण दे उद्देश नाल आपसी हित दे मामलियां ते चर्चा करनगे। इस दौरान विदेश मंत्रालय दे बुलारे रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत अते नेपाल विचकार विशेष भाईवाली नूं होर मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि दोवें देश विकास सहयोग, लोकां तों लोकां दे संबंध, व्यापार अते निवेश समेत आपसी हित दे होर खेतरां नूं शामिल करन वाला एक विशाल एजेंडा सांझा करदे ने। इस दौरान नेपाल दे विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा जो कि भारत दे 3 दिनां दौरे ते ने, कल नवी दिल्ली विच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल नाल मुलाकात कीती। भारत विच नेपाल दे दूतघर मुताबिक दोवां अधिकारियां ने नेपाल भारत दवल्ले संबंधां नूं होर मजबूत करन दे उद्देश नाल वख-वख मुद्दिआं ते चर्चा कीती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अज स्लोवेनिया के नवे नियुक्त हुए विदेश मंत्री टोन काजर नूं वधाई दित्ती ते रल के काम करन दी इच्छा प्रगटाई। 30 सालां तों वध समय के तजर्बे वाले साबका सफारती अधिकारी टोन काजर नूं स्लोवेनिया विच प्रधानमंत्री जेनिस जॉनसन की अगवाई वाली नवी सज्जे पक्षी गठजोड़ सरकार अधीन अधिकारित तौर पर सहुं चुकाई गई। 29वीं भारत अमरीका फौजी अधिकारियों की गलबात AST हवाई विच कराई जा रही है जिसकी सह प्रधानगी लैफ्टिनेंट जनरल राजीव कई, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रणनीति और लैफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल और US आर्मी पैसिफिक के डिप्टी कमांडिंग जनरल ने की थी। विचार वटांदरे दवल्ले रक्षा सहयोग को मजबूत करन, अंतर कार्यशीलता वधाउण, पेशेवर वटांदरे का पसार करन और सांझे सुरक्षा हितों की हमायत विच फौजी सहयोग को डूंगा करन ते केंद्रित सन। दोवां धिरां ने फौज तो फौज के रुझेव्या दे वध रहे दायरे की शलाघा की ते भारत अमरीका रणनीतिक भाईवाली नूं होर मजबूत करन लई अपनी वचनबद्धता की पुष्टि की थी। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल @EIRRN जलंधर। दिल्ली पुलिस ने मालवी नगर अग की घटना के संबंध में केशव नेगी नां दे एक होटल रसोईए नूं गिरफ्तार किया है। इस महीने की 3 तारीख न मालवी नगर के एक होटल में आग लग गई सी, 21 लोगों की मौत हो गई सी। इस तो पहला पुलिस ने होटल मालिक नूं भी गैर इरादतन कतल और होर संबंधित धाराओं के इल्जाम हेठ गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि होर पुछगिछ और जांच जारी है। पंजाब विच फिरोजपुर फाजिलका रोड से अज सवेरे एक वाहन से ट्रक नाल टकराउण कारण घट्टो घट 9 लोगों की मौत हो गई है ते 22 होर जख्मी हो गए ने। सारे पीड़ित इक्को परिवार के मैंबर सन। यह हादसा उस समय वापरिया जदों वह अपने एक रिश्तेदार दीआं अस्थियां ब्यास दरिया विच प्रवाह करन जा रहे सन। कई पीड़ितों की मौके पर ही मौत हो गई जदों कि जख्मियों नूं फिरोजपुर सिविल अस्पताल ते फरीदकोट मैडिकल कॉलेज लिजाया गया। पुलिस हल्कियां ने आकाशवाणी नूं दस्सिया कि 22 लोगों विचों कई की हालत गंभीर है। सीनियर पुलिस अधिकारी हादसे वाली थां ते पहुंचे ते स्थानक लोगों की मदद नाल बचाव मुहिम चलाई गई। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने पंजाब के राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया नाल चंडीगढ़ विखे मुलाकात की थी। इस दौरान दोवां ने पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली ते राष्ट्रीय महत्व के वख-वख मुद्दों ते व्यापक चर्चा की थी। नौजवानों खास करके सरहदी इलाकों के लोगों नूं हुनर विकास प्रोग्रामों नाल प्रभावशाली ढंग नाल जोड़न बारे भी विस्थार नाल गलबात हुई। दोवां शख्सियतां ने 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण नूं प्राप्त करने लई नौजवानों के शक्तिकरण अते हुनर विकास नूं महत्वपूर्ण थम दस्सिया ते इस दिशा विच निरंतर कोशिशां की जरूरत ते जोर दिता। केंद्रीय सभ्याचार ते सैर सपाटा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अज कहा कि भारत की सूरजी समर्था पिछले 12 सालों में 2.8 GW तो वध के 155 GW हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 40 लाख तो वध घर सूरजी ऊर्जा नाल प्रकाश मान्य ते खेतीबाड़ी खेतर विच सूरजी समर्था का दुगना होना चौगिरदे की संभाल के नाल नाल प्रगति का सबूत है। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ AAI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ MOUs 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ।

0: भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। अपनी हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि उनके इस दौरे से भारत और नेपाल के दरमियान खसूसी शराकतदारी मजीद मुस्तहकम होगी। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ बातचीत के लिए भारत के पास तिजारत सरमायाकारी दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राबतों तआवुन और तरक्या समेत एक तवील एजेंडा है। इसी दौरान नेपाल के वजीर खारजा खनाल कल नई दिल्ली में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत में नेपाल के सिफारतखाने के मुताबिक दोनों ने भारत और नेपाल के बाहमी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम करने की गर्ज से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर में आग लगने के हादसे के सिलसिले में केशव नेगी नाम के होटल के एक बावर्ची को गिरफ्तार किया है। इस माह की 3 तारीख को मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने का बड़ा वाकया पेश आया था और इसमें 21 लोगों की जान चली गई थी जबकि दीगर 40 जख्मी हो गए थे। इससे कबल पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल और दीगर मुतालिका दफात के तहत होटल के मालिक को भी हिरासत में लिया था। पुलिस ने कहा कि इस सिलसिले में मजीद पूछताछ और तहकीकात जारी है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नंबरों की तस्दीक और इम्तिहानात के पेपर फिर से जांचे जाने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में कल तक तौसी की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर बोर्ड ने कहा कि तलबा अब इतवार की आधी रात तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। CBSE ने कहा है कि यह फैसला दरख्वास्त दाखिल करने के अमल को मुकम्मल करने की खातिर तलबा को इजाफी वक्त फराहम करने के लिए किया गया है। इससे कबल दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 जून थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक गाड़ी के एक ट्रक से टकराने के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक और 22 दीगर जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मुतासरीन जिनका ताल्लुक एक ही कुनबे से था वो अपने एक रिश्तेदार की अस्थियां ब्यास नदी में बहाने के लिए वहां जा रहे थे। कई लोग मौके पर ही हलाक हो गए जबकि जख्मियों को इलाज के लिए फिरोजपुर सिविल अस्पताल और फरीदकोट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। पुलिस जराये ने आकाशवाणी को बताया कि 22 जख्मियों में से कई की हालत नाजुक है। सीनियर पुलिस ओहदेदारान हादसे के बाद जल्द ही हादसे के मकाम पर पहुंचे और मकामी लोगों की मदद से बचाव कार्रवाई शुरू की गई। जख्मियों को बाहर निकालकर नजदीक के अस्पतालों में पहुंचाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया के बहुत से मुल्कों को इक्तिसादी गैर यकीनी का सामना है, भारत एक सबसे ज्यादा तेज रफ्तार बड़ी मईशत की हैसियत से आगे बढ़ रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने 2025-26 के माली साल के दौरान अंदरून मुल्क 7.7% शरह तरक्की का जिक्र करते हुए ये बात कही। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल तक केरलम और माहे में कहीं कहीं बहुत शदीद से बहुत ज्यादा शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 दिन के दौरान मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्से कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल के हिस्सों में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड मशरकी उत्तर प्रदेश झारखंड और जम्मू कश्मीर में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। भारतीय आम का लुत्फ लेने और उसे फरोग देने के सिलसिले में दूसरे मैंगो मैजिक फेस्टिवल का आज अमेरिका के सिएटल में एहतमाम किया गया। फलों के राजा आम के 100 से ज्यादा सरकर्दा दरामदकार इसमें शामिल हुए और यहां आमों की कई अकसाम को नुमाइश के लिए रखा गया था जिनमें महाराष्ट्र से अल्फांसू और केसर, आंध्र प्रदेश से बागनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश से लंगड़ा और दशहरी और गुजरात से राजापुरी शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सिएटल में भारतीय कौंसलर जनरल ने गुज़श्ता वर्ष जुलाई में यहां आम की भारतीय अकसाम को मुतारफ कराने की पहल की थी और भारत और ग्रेटर सिएटल इलाके दोनों में मुख्तलिफ मुतालिका फरीकों के साथ शराकत दारी कायम की ताकि अमरीकी सारफीन के लिए कॉस्टको जैसे बड़े रिटेल आउटलेट्स में भारतीय आम की प्रीमियम अकसाम दस्तियाब कराई जा सकें। इस साल अप्रैल में कॉस्टको के CEO के साथ एक मीटिंग के बाद इन कोशिशों में नुमाया पेशरफ्त हुई जिसके बाद कॉस्टको के स्टोर्स में महाराष्ट्र से अनार की भगवा किस्म और इसके बाद केसर आम सारिफिन के लिए मंगवाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी

0: अपने हालिया मन की बात प्रोग्राम में भारतीय आमों की कई तरह की अकसाम के बारे में बात की थी और आम की पैदावार करने वाले किसानों की इस फल को आलमी बाजार तक ले जाने के लिए सताइश की थी।
1: आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: भारत सरदस्त आम की पैदावार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां 2,60,00,000 मेट्रिक टन सालाना आम की पैदावार होती है और 1,000 से ज्यादा आम की अकसाम पाई जाती हैं। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: सकाफत और सैर सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत की शमसी बिजली तैयार करने की सलाहियत 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ क्रिकेट मैचों के लिए 16 रुकनी T20 टीम का ऐलान किया है। श्रियास अय्यर को T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। इससे पहले सूर्य कुमार यादव कप्तान थे। तिलक वर्मा टीम के नायब कप्तान होंगे। नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को पहली मर्तबा टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में मर्दों के 18 साल से कम उम्र के एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में आज भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 पर खेला जाएगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमायाकारी में इजाफे की खातिर सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जाब्तों को सहल बनाया है। वजीर खारजा और डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने नंबरों की तस्दीक और पेपर की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में कल तक तौसी की है। पंजाब में आसुफ फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक गाड़ी और ट्रक के दरमियान टक्कर के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक हुए हैं। IMD ने कल तक केरलम और माही में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में श्रियास अय्यर को भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਹਾਈਵੇ ਦਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਜਯੋਤੀ ਨੂਰਾ ਨੇ।

फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत हाजिर है फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का। गीत नू आवाज़ दिती है श्रेया घोषाल ने।

फौजी ब्यूरो प्रोग्राम च अगला गीत सुनते हाँ फिल्म तमाशा दा। इस गीत नू आवाज़ दिती है मीका सिंह ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा

0: उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का

0: कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस विच तुसी कलाकार बनेर भुट्टा दे गाए लोक गीतां दा आनंद माणोगे। ते सब तो पहला सुनदे हां उन्हां दी आवाज़ विच हीर वारिस शाह।

0: प्रोग्राम चल रहा है रंगली धरती, वापस आने एक छोटे जे अंतराल तो बाद।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले

दिल्ली दे उप राजपाल तरनजीत सिंह सिद्धू ने पंजाब दे राजपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया नाल चंडीगढ़ विखे मुलाकात दौरान पंजाब चंडीगढ़ दिल्ली ते राष्ट्रीय महत्व दे वख-वख मुद्दयां ते व्यापारक चर्चा कीती। पंजाब विच फिरोजपुर फाजिलका सड़क ते एक वाहन ते ट्रक नाल टकरा जाण कारण घट्टो घट 9 लोकां दी मौत हो गई ते 22 होर जख्मी हो गए।

नमस्कार, जिला फतेहगढ़ साहिब तो आ जी। रामनाथ अत्तापुरी, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर, तो ये कहते जी कोई भी गीत सुना दो, तो नाले साडा खत जिहड़ा शामिल करन लई असीं तुहाडा धन्नवाद करते हाँ। असीं तुहाडा खत लिखण लई धन्नवाद करते हाँ जी। तो बाकी इन्हां दा मैसेज जिहड़ा सानूं हर वार मिलता है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रुख लगाओ। इन्हां ने जिहड़ा रुख लगाओ किया, ये कल जिहड़ा इनवायरमेंट डे मनाया गया उहदे लई ये बहुत जरूरी है कि रुख लगाओ तो पानी बचाओ, प्रदूषण नूं फैलन ना दो, मतलब कि यह अपना मैसेज दिने। असीं इन्हां नूं कहिंदे आ जी रामनाथ अत्तापुरी नूं, जे तुसीं कल इनवायरमेंट डे ते है ना, कल पेड़ पौधे लगाउण दा दिन सी, उहदी रक्षा करन दा दिन सी, जे तुसीं कोई पेड़ पौधा लगाया तो जरूर सानूं अगली चिट्ठी च दस्सीओ। खत लिखण लई शुक्रिया। तो अगला खत साडे कोल आया है, इन्होंने एनी सोंग लिखिया होया, चिट्ठियां मिठियां, गांधी चौंक रोपड़ तो पंजाब तो, हरदेव मिका बलविंदर विरक जैतिक विरक ते मिका विरक होना था। आओ इन्हां सारयां दी रली मिली फरमाइश ते सुनदे हाँ बब्बू मान दी आवाज़ च गीत।

0: बहुत शुक्रिया अमरकान जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम है लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है।
2: अज के प्रोग्राम खेड संसार प्रोग्राम खेड सरगर्मियां दे नाल नाल इदां दे खेड मैदानां नाल जुड़े जज्बाती किस्से तुहाडे नाल सांझियां करता रहेगा। ते प्रोग्राम च आओ हुण चलिए बैडमिंटन दे कोर्ट विच। भारत दी स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रेड्डी रिंकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन 2026 विच पुरशां दा डबल्स खिताब जीत के इतिहास रच दिता है। सिंगापुर ओपन दा डबल्स खिताब जीतण वाली इह पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। इस शानदार जीत दे नाल ही उन्होंने BWF वर्ल्ड टूर ते अपने 2 सालों दे खिताबी सोके नूं वी खत्म कीता। सिंगापुर ओपन विच फाइनल विच भारतीय जोड़ी दा सामना इंडोनेशिया दी मजबूत जोड़ी फजर अल्फियान ते मोहम्मद शोहिबुल फिकरी दे नाल सी। पहली गेम 18-21 नाल हारन तो बाद भारतीय जोड़ी ने शानदार वापसी की सी। अगलियां दोवें गेमां 21-17, 21-16 नाल जीत के उन्होंने 73 मिनटां विच चले इस रोमांचक मुकाबले नूं अपने नाम कर लिया सी। सिंगापुर ओपन विच जिथे सात्विक साईराज रेड्डी ते चिराग शेट्टी ने खिताब जीत के इतिहास रचिया, उथे इंडोनेशिया ओपन विच इन्हां दोवां शटलर्स दा प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा। इस स्टार जोड़ी नूं उस वेले वड्डा झटका लगा जदों पहले दौर दे मैच विच सिर्फ 7 मिंट खेडण दे बाद सात्विक दे सज्जे मोढे दी सट कारण इस जोड़ी नूं मैच विचों ही छड्डणा पिया। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन विच भारत शटलर्स दी चुनौती पूरी तरह दे नाल खत्म हो चुकी है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले विच भारत दी आखिरी उम्मीद हरिहरन अमसा कारुनन ते MR अर्जुन दी जोड़ी भी हार के बाहर हो चुकी है। क्वार्टर फाइनल विच उन्हां नूं मलेशिया दे गो शजेफई ते नूर इजुद्दीन हथों 12-21 10-21 नाल सीधे गेमां विच हार दा सामना करना पिया। 2 बार दी ओलंपिक मैडल जेतू PV सिंधु ने पहले दौर विच तां थाईलैंड दी शटलर ते जित हासिल कीती सी, पर दूजे दौर विच उन्हां दा सामना विश्व दी नंबर 1 खिडारन दक्षण कोरिया दी NC यंग नाल सी। इस मुकाबले च सिंधु नूं 17-21, 15-21 नाल हार झलनी पई। मालविका बंसोड ते उन्नति हुडा इह दोवें भी अपने पहले दौर दे मुकाबले हार के टूरनामेंट चों बाहर हो गईआं। मर्दां दे मुकाबलियां विच वी भारतीय शटलर्स कुछ खास नहीं कर सके। नौजवान खिडारी आयुष ने पहले दौर विच विश्व दे 15 नंबर खिडारी नूं हराया सी, पर दूजे दौर विच उह अपनी लय बरकरार नहीं रख सके ते हार के बाहर हो गए। भारत दे चोटी दे पुरश सिंगल्स खिडारी लक्ष्य सेन ते HS प्रणय वी पहले ही दौर विच आपो अपने मुकाबले हार के बाहर हो चुके हैं।

0: मदन बीरेंद्र सिंह, पेशकश प्रतिष्ठा जैन। खेल संसार।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम खेड संसार। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 4:30 वज रहे ने। आओ हुण असी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करदे हां।

गाइए गुण गोपाल कृपा निध, दुख बेदारन सुखदाते सतगुर, जाको पेटत हुए सगल सिद्ध। ए गुरवाक, अकाल पुरख परमात्मा ते पूरन भरोसा रखन वाले गुरमुख जना दे हिरदे दी उस लोचा दी तर्जुमानी करता है, जिस विच्चों प्रभु दे गुण गायन करन दी तीबर इच्छा प्रगट हुंदी है। पर प्रभु दा गुण गायन प्रभु दी किरपा तो बिना नहीं हो सकता। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी राग कल्याण विच उचारत शब्द विच अकाल पुरख परमात्मा पासों ऐसी किरपा दी जाचना करदे हन। आप सुंदर दृष्टांत दिंदे हन कि जिस तरह पंवरा फुल्लां दे आले दुआले मंडरौंदा होया गुण गुणौंदा है, हे प्रभु मेरा मन आप जी दे चरण कमलां दा पंवरा बन के आप जी दे गुण गायन करदा रहे, साडे ते ऐसी किरपा करो जी। फरमान है हमारा एह किरपा की जय, अल मकरंद चरण कमल स्यों मन फेर फेर रीझै। श्रवण करदे हां डॉक्टर अलंकार सिंह होरां वल्लों गायन कीता होया।

हमारा एक कृपा की जय। अल मकरंद चरण कमल स्यों मन फेर फेर रीझे। इस शब्द गायन की तासी डॉक्टर अलंकार सिंह होरा। प्रभु दा नाम जीवन दा आधार है, संता पक्तां दा ऊट आसरा है,

नाम सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। इस प्रकार प्रभु नाम ही अजिहा पारजात है जिस नाल सारे दुखां तो छुटकारा मिल जाता है ते मनुख सदीवी आनंद की भी प्राप्ति हो जाती है। इस पारजात नाम की प्राप्ति प्रभु प्यारियां नूं क्योंकि उसकी रजा विच रहिंदियां सिमरन अभ्यास सदका हो चुकी हुंदी है, इसलिए मनुख भी अजिहे पूर्ण पुरशां की संगत विच विचर के इस बरकत नूं प्राप्त कर सकता है। जदों उस नूं प्रभु कृपा द्वारा इस नियामत की बख्शिश हो जाती है तां उसका जन्म मरण का गेड़ मुक जाता है। उस नूं जदों नाम का रंग चढ़ता है तां एहो उस लई होली अते बसंत रूपी

गुर सेवाओ कर नमस्कार, आज हमारा मंगलचार, आज हमारा महा आनंद, चिंत लथी पेटे गोबिंद। इस शब्द गायन कीता सी भाई गुरदयाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

हुण तुसी सर्वणकार सी साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले 6 बजे ने हुण तो कुछ ही पलां च तुसी सुणोगे हिंदी च समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हुन तो कुछ समय बाद यानी शाम 6:30 बजे पेश करेंगे देहाती प्रोग्राम। अज इस विच कम दियां गल्लां, कल दे प्रोग्राम मौसम दे हाल ते गीत संगीत दे नाल नाल डॉक्टर MS कालो सोनी फसलां च पानी बारे जानकारी देणगे। सत बज के 10 मिनट ते युवा शक्ति खेल मंत्री मनसुख मांडविया। ये प्रोग्राम तुसी सुनोगे जी साडे दिल्ली केंद्र तो। सत बज के 45 मिनट ते साहित्य सुधा प्रोग्राम च डॉक्टर सलोनी भारद्वाज की वार्ता सुनोगे संस्कृत साहित्य विच वनस्पति पूजन। सत बज के 55 मिनट ते प्रायोजित प्रोग्राम पेश करांगे लम्हे। आठ बज के 10 मिनट ते तुसी चंद गीत सुनोगे। सवा 8 बजे सुरसरता प्रोग्राम च अजीत कौर दे गाए गीत सुनवाए जाणगे। रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट प्रोग्राम, 9:30 बजे साहित्य भारती ते रात 10 बजे संगीत दा अखिल भारतीय कार्यक्रम तुसी सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र राही। एसीजी अज प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नूं तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नूं सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
2: पर की उसदे लई मैनू दिल्ली जाना पएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसीं ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
2: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट दी वैबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
2: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
0: सरकार दे माण मत्ते 12 साल पूरे होण ते आकाशवाणी दा समाचार सेवा विभाग 1 जून तो प्रसारित कर रहा है 21 लड़ियां दा एक विशेष प्रोग्राम। 35 मिनट दे इस प्रोग्राम दा प्रसारण हुंदा है रोजाना शाम 7:10 तो लेके 7:45 तक। इसलिए शाम 7:30 प्रसारित होण वालियां पंजाबी खबरां दा प्रसारण रोज शाम 7 कीता जा रहा है। सरकार दे माण मत्ते 12 सालां दी कामयाबी दी कहानी आकाशवाणी दे समाचार सेवा विभाग दी जुबानी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है।

0: कल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारिक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारिक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारिक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा।
0: हाँ जी।
1: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तां घर आ जावांगे। हाँ
0: क्यों? पर मैं
1: कल्ले दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
0: इन्ने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लिए 30,000 दियो, नहीं तां बेटा जेल जावेगा।
0: जेल तां तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
1: ओए,
0: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ये सब फ्रॉड है, इसलिए घबराओ ना। पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आने वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल या वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नू पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नू रिपोर्ट करो।
2: हेलो मम्मा।
0: हाय।
3: RBI कहिंदा है
0: जानकार बनो, सुचेत रहो।
4: असी आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां, हुण सुनदे हां देश गान।

0: योजना सूबे भरते लोगों लिए वड्डी राहत साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना तहत 3,79,000 मरीज पहला ही 654 करोड़ रुपए का नकदी रहित इलाज प्राप्त कर चुके ने। इस योजना तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक के नकदी रहित इलाज की सहूलत दी गई है। उन्होंने भी कहा कि पंजाब सरकार सूबे के हर परिवार लिए गुणवत्ता और किफायती सेहत संभाल सेवावां यकीनी बनाने लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना नूं लोकां वल्लों भरवां हुंगारा मिलिया है अते सूबे भर विच सर्वव्यापक सेहत संभाल कवरेज वल क्रांतिकारी कदम वजों उभर रही है। प्रोग्राम की पहुंच बारे दसदियां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना तहत हुण तक 47,27,000 सेहत कार्ड जारी किए गए ने। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मावां तियां सत्कार योजना दे लागू करन दी भी समीक्षा की। उन्होंने ऐलान किया कि इस योजना तहत सूबे भर दियां योग औरतां नूं 1 जुलाई तो माली सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहलकदमी का उद्देश औरतां दी आर्थिक स्वतंत्रता नूं मजबूत करना अते सन्मानजनक जीवन यकीनी बनाउणा है। पंजाब विच फिरोजपुर फाजिलका रोड ते अज सवेरे एक वाहन दी ट्रक नाल टक्कर हो जाण कारण घट्टो घट 9 लोगों की मौत हो गई ते 22 होर जख्मी हो गए ने। सारे पीड़ित इको परिवार के मैंबर सन। यह हादसा उस समय वापरिया जदों अपने एक रिश्तेदार दियां अस्थियां ब्यास दरिया विच प्रवाह करन जा रहे सन। कई पीड़ितों की मौके ते ही मौत हो गई जदों कि जख्मियों नूं फिरोजपुर सिविल अस्पताल ते फरीदकोट मैडिकल कॉलेज ले जाया गया। पुलिस हल्कियां ने आकाशवाणी नूं दस्सिया कि 22 लोगों विचों कईयां दी हालत नाजुक है। पंजाब के सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ऐलान किया है कि सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी गुरदासपुर विखे अकादमिक सैशन 2026-27 तो 5 नवे सनत ते हुनर आधारित कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। श्री बैंस ने कहा कि नवे कोर्सा विच आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस AI अते मशीन लर्निंग विच BTech रोबोटिक्स अते AI विच BTech BPharmacy BSc एग्रीकल्चर ते MCA MBA अते MSc विच 5 साला एकीकृत प्रोग्राम शामिल ने। उन्होंने कहा कि पंजाब की उच्च सिक्ख्या नूं भविख दियां रोजगार ते सनत दियां जरूरतां मुताबिक तैयार किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों दौरान पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच तापमान च गिरावट आउण नाल कई थावां ते गर्मी तो मिली राहत तो बाद आउंदे दिनां च लू चलण दा येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग मुताबिक कल तो 10 जून तक चंडीगढ़ समेत पंजाब ते हरियाणा विच कुछ थावां ते लू चलण दी पेशीनगोई की गई है। 11 जून नूं पछमी गड़बड़ी करके लू दे नाल नाल तेज़ हवावां ते गरज चमक दी पेशीनगोई की गई है। 12 जून नूं गर्मी तो कुछ राहत मिलण की उम्मीद है। चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने दसिया,
1: पंजाब हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से जो बारिश और बीच बीच में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है उसमें टेम्परेचर सामान्य के आसपास से उससे कम चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ और टेम्परेचर बढ़ेंगे और विशेष बात यह कि ह्यूमिड वेदर भी रहेगा, उससे डिस्कम्फर्ट लेवल को छा सकते हैं। और अगले 2 दिन बाद जो है पंजाब के कई जिलों में, खासकर जो पंजाब का साउथ वेस्टर्न पार्ट है और हरियाणा का साउथ वेस्टर्न पार्ट, वहां पे हीट वेव कंडीशन चलने की संभावना है और फिर उसमें कमी आएगी 11 तारीख के आसपास, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ और आ रहा है। तो आने वाले 4 से 5 दिन अब एक तरह से फिर से गर्मी लौटेगी। कुछ जिलों में पंजाब के साउथ वेस्टर्न पार्ट पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पंजाब वहां पे, और इसी तरह से हरियाणा के सदर्न और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में लू की स्थिति भी बनेगी।
0: खेडा विच भारत ते बांग्लादेश दरमियान औरतों की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल अज गोवा च खेडिया जाएगा। ये मैच हुण तो थोड़ी देर बाद शाम 6:30 बजे शुरू होएगा। भारत ने सैमीफाइनल विच भूटान नूं 1-0 नाल हरा के फाइनल विच अपनी थां पक्की कीती। भारत ने जापान नूं 4-1 नाल हरा के तीजी बार मर्दा दे अंडर-18 एशिया कप हॉकी दा खिताब जीत लिया है। आज जापान दे काकामेगा हारा विच खेडे गए फाइनल मुकाबले विच भारत लई आशीष पूर्ति ने हैट्रिक लाई जदों कि कप्तान केतन कुशवाहा ने 4था गोल किया। मेजबान जापान लई कोई गोल काकू नूं माता ने किया। भारत दी औरतां दी टीम ने दक्षिणी कोरिया नूं 3-0 नाल हरा के कांसी दा तमगा हासिल किया है। आखिर च खास खबरां। चोण कमिशन पंजाब वालों भलके 7 जून नूं सूबे दे सारे 24,453 वोट केंद्रां ते विशेष कैंप लाए जाणगे। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली तहत खाण वाले तेलां लई म्यारी पैकेजिंग लागू की थी। दिल्ली दे उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू ने पंजाब दे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया नाल मुलाकात की थी ते वख-वख अहम मुद्दियां ते व्यापक विचार वटांदरा किया। पंजाब विच सड़क हादसे विच घट्टो घट 9 लोगों की मौत 22 जख्मी ते भारत ने जापान नूं 4-1 नाल हरा के तीजी बार अंडर-18 एशिया कप हॉकी का खिताब जीतिया। इस दे नाल ही साडा

0: बुलेटिन खत्म होता है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन शाम 7 बजे होएगा। नमस्कार।
1: अस आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले शाम दे 6:30 बजे ने हुण पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: हाँ जी संधु साहब, देखो जिदा आप कह रहे खेती का जोड़ा आधार है वो पानी तो जमीन है। जमीन के बच्चों सेहत खराब होगी जमीन की, तुम्हें पता ही है भी कलर वाली जमीन को अपने किदा वाही योग किया है ना, कि मेहनत कीतिया ने, पर अज फिर असी जमीन को कलर बनाने वाले पास तुरे हुए हैं कितने ना कितने।
1: बहुत ज़्यादा जो आप रसायणों की वरतों करते
0: हाँ
1: जिदा आप कह लें कि पहला जेडे कुदरती जो निर्भर से हूँ अपना सौखा तरीका लभ गया
0: हाँ
1: भी फटाफट खाद पाओ दवाई
0: शॉर्टकट
1: पाओ।
0: चलते हैं ना,
1: हाँ जी
0: शॉर्टकट चलते हैं।
1: हाँ
0: तो इस तरह
1: कई
0: पानी
1: समस्यावें आने लग गई
0: आने लग गई। पानी को लेकर देखो कई तो जोन ऐसे है जिन्होंने डार्क जोन भी घोषित किया गया है। जमीन में जो जमीन में पानी लाने वाला पानी है वो कितने ना कितने फसलों के अनुकूल नहीं है,
1: पीन
0: सो इस
1: वाला
0: कर
1: नहीं जरा
0: पीण
1: जी।
0: वाला हाँ बहुत बड़ी समस्यावान पैदा हो रही ने। सो अज हम जो आप सौनी फसलों की गल करते हाँ, ये इन्ना क है कि देखो साढ़े साइंसदानों ने खोजा करके बहुत सारिया यह चीज़ा साढ़े सामने पेश कीतियां ने, सानू दित्तियां ने कि जिन्हां नाल आपां पानी की सही तो सुयोग वरतों कर सकते
1: कर
0: हैं,
1: सकते हैं जी
0: बजाय
1: जो
0: आपां फ्लड इरीगेशन दे पानी की जिहड़ा दुरुपयोग करिए। सो सही प्रबंधन फसलों में पानी का बड़ा जरूरी है। इस विषय के उत्ते डॉक्टर एम एस कालू होर नाल गल्लां बातां सांझियां हुई हैं, ये सांझियां करते हैं।
2: डॉक्टर मेहरबान सिंह कालू जी, तुसीं भौतिक विज्ञानी हो और भूमि विज्ञान विभाग खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी तो साढ़े कोल आए हो। सब तो पहले देहाती प्रोग्राम की बैठक चाहिए तो जी आया कहने हैं। गल है कि डॉक्टर साहब, अज बहुत चिंता का जोड़ा विशा है वो है कि जमीन दे जोड़ा पानी का पद्धर है वह दिन ब दिन आप सारे जानने हाँ कि थले जा रहा है। हुण ये भी है नहीं कि असी फसल बीजनिया छड़ दिए या कोई ना कोई जोड़ा है आप धंधा बदल लीए तो हो नहीं सकता, करना तो आपने खेतीबाड़ी का काम ही है। सो इस करके जोड़ा ये जमीन हेठला पानी है यदा सुचा प्रबंधन आप करके किदा फसलों जोड़ा है नेपरे चढ़ना है तो खेतीबाड़ी में जोड़ा सुरजीत रखना है, यही अज का विशा है। तो इस बाबत आप गल बात करनिया है क्योंकि अज पंजाब दे विच कुछ खास करके जो आप जिले की गल करते बड़ी चिंताजनक स्थिति है। कुछ जोड़े इलाके है जिन्हों के बच्चे तो मतलब असी बहुत ज़्यादा गंभीरता सोचने की लड़ है पानी में लैके। तुसीं की सोचते हो कि अज पंजाब दे विच जिहड़ी पानी की स्थिति है कित्थे क तक इहदे बाबत सानू जिहड़ा गंभीरता नाल सोचना चाहिए, किस लिहाज नाल स्थिति जिहड़ी अज कित्थे क खड़ी है?
3: बहुत बहुत धन्यवाद जी ये मौका देने लिए। और जे पंजाब दे पानी की गल करते हैं तो इस वेले मैं कहना जो सब तो महत्वपूर्ण विषय है विचारण वाला तो वह पंजाब दे पानी दे पद्धरां ते गल करन दा समा है, क्योंकि पिछले असी 3-4 दहाकों तो देखिया है कि पानी का पद्धर जिहड़ा हैगा वह बहुत डूंघा जा रहा है और बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये पानी तो तुहानू पता है कि जीवन का आधार है बेस है, जे पानी है तो सब कुछ है, अदरवाइज ना खेतीबाड़ी पॉसीबल है ना लाइफ ही कोई पॉसीबल है, तो वो करके ये सब तो गंभीर विषय है। और ये संजीदगी जड़ी है विज्ञानियों की सरकारा की और जिन्होंने पानी वरतना उन्होंने तिना की संजीदगी जड़ी है इस पक्षों होनी बहुत जरूरी है। ये समा रेंदे सानू संभालना पेगा और इस विषय को हर पक्ष तो विचारना पेगा ता जो असी अपनियां आने वाली जड़ियां जनरेशनस ने पुश्ता ने उन्हां वास्ते पानी बचा सकी है।
2: ਅਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੇਖੋ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ

0: व सम्मेलन नु संबोधन करदिया डॉक्टर वाडविया ने कहा कि देश की 65% आबादी 35 साल तो घट उमर की है जो भारत नु दुनिया के सब तो नौजवान देशों विचों एक बनाउंदी है। उन्हें कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हेठ सरकार नौजवानों की ऊर्जा और समर्था नु राष्ट्र निर्माण और भारत नु विकसित राष्ट्र विच बदलन के टीचे वल लाउन लई लगातार यतनशील है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: पंजाब विच फिरोजपुर फाजिलका रोड ते सवेरे एक वाहन दी ट्रक नाल टक्कर हो जाण कारण घटो घट 9 लोगों की मौत हो गई ते 22 होर जख्मी हो गए। सारे पीड़ित इको परिवार के मैंबर सन। यह हादसा उस समय वापरिया जदों अपने एक रिश्तेदार दीआं अस्थियां ब्यास दरिया विच परवाह करन जा रहे सन। कई पीड़ितों की मौके पर ही मौत हो गई जदों की जख्मियों को फिरोजपुर सिविल अस्पताल से फरीदकोट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। पुलिस हल्किया ने आकाशवाणी को दसिया कि 22 लोगों विचों कई की हालत नाजुक है। सीनियर पुलिस अधिकारी हादसे वाली थां ते पहुंचे ते स्थानक लोगों की मदद नाल बचाव मुहिम चलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिरोजपुर जिले विच होए हादसे ते दुख प्रगट कीता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने अपने अजीजा नूं गुआउण वाले परिवारां प्रति संवेदना प्रगट कीती। उन्होंने हादसे विच जख्मियों के जल्दी ठीक होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री ने हरेक मृतक के नेड़ले रिश्तेदारां लई 2-2 लाख रुपए ते जख्मियों लई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड विचों 50,000 रुपए की राहत रकम का ऐलान भी किया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर बारे झूठे दावे फैलाने लई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल की अपनी अस्थायी मैंबरशिप की दुरवरतों कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि प्री हरीश ने खबरदार किया कि पाकिस्तान नूं अपनियां जिम्मेवारियां प्रति सुचेत रहना चाहिए है।
2: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
2: Claims by Pakistan would not change this fundamental reality.
0: पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई पार्टी ने पाकिस्तान सरकार के साबका प्रधानमंत्री इमरान खान ते उनां दी पत्नी बुशरा बीबी नूं कानूनी ते संविधानक अधिकारां तों वांझा करन दा इल्जाम लाया ते वी कहा कि जोड़े नूं ढुकवीं डॉक्टरी देखभाल नहीं मिल रही है। इमरान खान ते बुशरा बीबी भ्रष्टाचार के कई मामलों विच कैद विच ने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विच बोलदे पीटीआई नेता ते खैबर पख्तूनख्वा दे मंत्री शफी जान ने दावा किया कि खान ते उनां दी पत्नी नूं रिश्तेदारां ते पार्टी मैंबरां नूं मिलण तों रोकिया गया है। खेडा विच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड ते आयरलैंड नाल होण वाली 2020 सीरीज लई भारतीय टीम दा ऐलान कर दिता। सूर्य कुमार यादव दी थां श्रेयस अय्यर नूं टीम दा कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा टीम दे उप कप्तान होणगे। वैभव सूर्यवंशी नूं पहली बार टीम विच शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 विच सब तो वध दौड़ा बनाईआं सन। प्रिंस यादव नूं वी टीम विच थां मिली है। हॉकी विच भारत ने जापान नूं 4-1 नाल हरा के तीजी वार मर्दां दे अंडर 18 एशिया कप हॉकी दा खिताब जीत लिया है। आज जापान दे काका मिकाहारा विच खेडे गए फाइनल मुकाबले विच भारत लई आशीष पूर्ति ने हैट्रिक लाई जदों कि कप्तान केतन कुशवाहा ने चौथा गोल कीता। मेजबान जापान लई इक्को इक गोल गाकू नुमादा ने कीता। भारतीय औरतों की टीम ने दक्षिणी कोरिया नूं 3-0 नाल हरा के कांसी दा तमगा हासिल कीता है। आखिर च खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के आर्थिक विकास नूं होर हुलारा देने लई अपने आर्थिक सलाहकार कौंसल के मैंबरां नाल मीटिंग की थी। केंद्र ने एकसारता ते पारदर्शिता नूं यकीनी बनाउण लई खुराकी तेलां वास्ते म्यारी पैकेजिंग लागू की थी। चोण कमिशन पंजाब वल्लों भलके 7 जून नूं सूबे भर के 24,453 वोट केंद्रां ते SIR लई विशेष कैंप लाए जाणगे। भारत ने जापान नूं 4-1 नाल हरा के तीजी बार अंडर 18 एशिया कप हॉकी दा खिताब जित्तिया। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन सवेरे 8:30 बजे होएगा। नमस्कार।
4: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। हुण तुसीं सुणोगे केंद्र सरकार दे 12 साल पूरे होण ते दिल्ली तों इक विशेष।
5: This is Akashvani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants are Professor Sushma Yadav and

0: Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. Iske antargat aaj suniye Modi sarkar ke 12 saal mahila sashaktikaran ka parivartankari dashak. Isme bhag le rahi hai Professor Sushma Yadav aur varishth patrakar Aditi Tandon. Karyakram ka sanchalan kar rahi hai Sonu Sood.
1: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. Hum aap se jo aarthik sashaktikaran hua hai pichle 12 varshon mein NDA sarkar ke is karyakal mein, uske upar hum aap se discussion karna chahenge, chahe wo Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए. सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
2: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ. प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ. और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति. उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता. और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है जी. उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है, जो दिखाई देती है. मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है. इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके. और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थीं, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया. और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
1: जी,
2: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी. तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन. सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी, जनधन खातों की सफलता. लेकिन वो वहीं नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाएं वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे. लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से. 3 करोड़ की पहले बात की थी, लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं. मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया. देखिए, पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
1: जी.
2: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है. और वो महिला बन जाए
1: जी.
2: तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है. और कि ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है. हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना जो पीएम मुद्रा योजना है उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट. और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी है. और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है.

0: वो लकी से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही हैं उन MSMEs को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और पी महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे लगभग। वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी। क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर
1: यस
0: ऑल वर्क्स। तो वो
1: एब्सोल्युटली
0: काम भी हो रहे
1: जी
0: जी।
1: जी
0: और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं? तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं, वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। तो
1: एब्सोल्युटली
0: ये
1: एब्सोल्युटली जी
0: सशक्तिकरण मात्र नहीं है
1: जी
0: जी, ये आजीविका के मामले हैं
1: यस
0: जी।
1: अदिति जी, सुषमा जी हैज सो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड यू नो द वेरियस वेज इन विच फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर वुमेन। इनफैक्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एंटरप्रेन्योरियल इंक्लूजन इन विच वुमेन हैव बीन मेजर बेनिफिशरीज, एंड इंडिया इज लीडिंग इन इंक्रीजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज। 3 करोड़ प्लस वुमेन लेड MSMEs are contributing to the country's progress, and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream of the country?
2: See, I think what you just described is the result of policy framework and policy intent of the government under Prime Minister Narendra Modi, who has clearly said that women are one of the four pillars of Viksit Bharat. If the country has to attain the developed country status by 2047, it is imperative that women are given conditions and, you know, where women are handheld to achieve their true potential. So what we are seeing today is that driven by several life cycle based approaches through the policy framework of the government. We have schemes now that have targeted interventions through sectors like health, education, housing, there's digital access, sanitation, then you have financial inclusion. What I'm basically trying to say is women are today in a position through the policy framework to lead self-help groups, launch businesses. You know, they're breaking barriers in science, defense, and sports. We just saw JEE advanced results come in and how women were leading over, you know, the girls were leading over boys in several of the top positions. So in STEM disciplines, Indian women are leading not just in India, but across the world also. Right now, as we speak, fresh data has suggested that women and children, you know, they comprise 67.7% of India's population, the data that has come in just before the beginning of the new census. So empowering them is not just a requirement anymore. It is a strategic imperative. Because look at the percentage of women and children in the country, literally 70% right now. So that is the basis of the landscape that is being created. What you just mentioned, that you have women leaders across segments these days. And you rightly said that, you know, you you have women in startup leadership roles. You have women across mudra loans. You have around 70% mudra loans that have gone to only women. So the gaps that existed in the policy framework to enable women to achieve their financial potential have now been filled through several schemes. And what we also need to remember, Sonu, is that for generations, Indian women have faced systemic barriers. You know, they've been limited access to education.

0: 25 में. सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है?
1: बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी ये वही है. और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गोन डाउन टू बिलो 900, विच हैज नाउ ऑफ कोर्स बिकम 929. एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट और वाज बिकॉज ऑफ दैट. और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा. आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज ए ह्यूज जंप. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेईई देख लीजिए, आप सीबीएसई देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप बीए एमए पीएचडी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they're outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी.
0: बिल्कुल,
1: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं जहां से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके एलपीजी कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ. फिर मातृवंदना योजना, जो पीएम मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ड. और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर.
0: For the universal immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring, you know, till March 2026.
1: Yes.
0: More than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. Ek
1: yes.
0: aur jo aapne baat kari matritva support di ja rahi hai. Ji. So maternal mortality rates bahut niche aaye hain, infant mortality rates niche aaye hain aur institutional deliveries 68% प्रतिशत से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है. जी 98 बिल्कुल 98%. तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
1: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है.
0: जी
1: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं.
0: जी जी
1: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी. फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%. सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से. सो ODF फ्री इंडिया. देन जो मातृ मृत्यु दर, मोर्टेलिटी एज यू सेड, which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
0: Yes.
1: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together,
0: yes.
1: which will surely lead to healthier generations in coming times.
0: And also when yes. women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know,
1: yeah,
0: due to the
1: yeah.
0: Jal Jeevan mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
1: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. Mm. You can see the women have dreams about their children now, and especially the daughters. Mm. I have come across as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of.

0: of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up. और मोदी जी जो बार बार कहते हैं, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र के जन्मदाता है और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है. दिस इज द लिंकेज बिटवीन वुमेन्स हेल्थ एंड द एम्पावर्ड और विकसित भारत, एज वी से आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है.
1: एब्सोल्युटली आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव्स वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है, ये सेफ्टी नेट का वुमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का, जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं. जैसे हमें याद आता है आरजी कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ. ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए, उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया. निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं. और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद दो तीन बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है. और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए. मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती. हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का. जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने सदियों से देखा जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया. मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए. सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी. एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं. उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है. समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है. और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स. जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा. इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है. अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो. पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ
1: जी
2: जाता है.
1: बिल्कुल ही पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है. और जो भी व्यवस्था है, 15,000+ विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700+ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स है जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है. लेकिन इन सबका भी इस्तेमाल, ऑफकोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आए और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो. सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी.
2: बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है. दूसरी बात ये है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी

0: सोसाइटीज सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है, तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए, जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है, बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था। आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है।
1: जी
0: अब
1: जी
0: अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड
1: बिल्कुल
0: होगी, और ओनस टू प्रूव अदरवाइज वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है, ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल, पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि
1: जी
0: महिलाओं के
1: बिल्कुल
0: साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है, या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक विमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड हैं, और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन विमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो, या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में, या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है, विच इज इजिएस्ट फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट, बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं, वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है, और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग, ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे, और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। देर कांट बी अ बेटर रेसिपी, बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजली, एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो, लाइक दे आर कमिंग अप नाउ, बट विद दैट यू ऑल्सो नीड लेटेस्ट स्किल्स, बिकॉज स्किल्स कीप चेंजिंग एंड द मार्केट नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स, एट टाइम्स दे मे बी डिजिटल स्किल्स इन कमिंग टाइम, एंड यू सी वीमेन आर रियली वेरी गुड एट दैट, बिकॉज दिस इज हार्ट एंड हैंड बोथ गोइंग टूगेदर, एंड देन इफ यू रियली ट्रेन द इन टू द राइट काइंड ऑफ स्किल्स एंड एम्पावरमेंट टेक्निक्स ऑल्सो आई वुड से और फील्ड्स, देन दे आर रेडी फॉर द वर्ल्ड। और ये सरकार चाहती है, विमेन लेड डेवलपमेंट कब होगा, वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%, और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं, ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी, और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार होंगे।
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम

0: अब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है, जो पुरुषों से कुछ ऊपर है। और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
1: बिल्कुल, आई विल से दैट, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज। आई कैन से विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, फर्स्ट टाइमर, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं, सो इट रियली डजंट मैटर, दे लर्न। एंड आई हैव मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन्ड अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन, तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई आर वी हियर, तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे। और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली इन ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा। और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
0: अदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए। वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ, आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया, तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
0: So as India moves towards the goal of Viksit Bharat by 2047, the role of women is increasingly becoming central to this journey. Across sectors, women are contributing as workers, entrepreneurs, farmers, innovators and leaders. Sushma ji, Aditi ji, thank you so much for this insightful and inspiring discussion.
1: Thank you.
3: In this special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal Mahila Sashakti Karan ka Parivartankari Dashak. इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: थज प्रोक्ता शुक्रस्य औधुम्बरी मता शमीनाम तु शने प्रोक्ता राहो दुर्वामयी तथा केतो दममयी प्रोक्ता अन्यक्षाम पलाश वृक्षा जा। धार्मिक संस्कारां विच वी वेदी का निर्माण किया जाता है। वेदी की बनावट लई भी अनेक वनस्पतियां का प्रयोग किया जाता है जिन्हां विच केला गन्ना अंब अते बांस आदि प्रमुख हैं। संस्कृत साहित्य का वनस्पति के प्रति श्रद्धा परक दृष्टिकोण इस गल नूं प्रकट करता है कि यजुर्वेद विच अग्नि देवता अगे प्रार्थना की गई है कि वह स्वर्ग धरती आकाश अते वनस्पतियां आदि नूं किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचावे। शिवो भव प्रजा भयो मानुषी भयस्तु अंगिरह माँ धावा पृथ्वी अभिशोची माँ अंतरिक्षम माँ वनस्पति। धर्मशास्त्र विच तां वनस्पतियां नूं नुकसान पहुँचाण वालियां नूं अते वनस्पतियां नूं कट्टण वालियां नूं सजा देण दी गल वी कीती गई है। गुल्लम गुच्छ क्षुप लता प्रतान औषधि वीरुधाम पूर्व समृताद अर्धदंडा स्थानेषु उक्तेषु कृतिने बिना मतलब भाव जगत लई वरतों तो बिना इन्हां वनस्पतियां नूं कट्टण ते मनुस्मृति अते याज्ञवल्क्य स्मृति विच प्राश्चित दा विधान भी किया गया है। वृक्ष गुल्लम लता विरु च छेदने जप्यम ऋक्षतम सियाद औषधि वृथा च छेदे शी राशि गो अनुगोदिनम फलादानम तु वृक्षाणाम छेदने जप्यम ऋक्षतम गुल्लम वल्ली लता नाम च पुष्पिता नाम च वीरुधाम। साडे शास्त्रां अते विज्ञान दे अनुसार पिप्पल भी एक अजिहा रुख है जड़ा सारा दिन अते रात नू ऑक्सीजन छड़दा है। इस दे महत्व कारण भी भगवान कृष्ण ने गीता विच पिप्पल नू अपना स्वरूप मन्या है। अश्वत्थता सर्व वृक्षाणाम इंज मन्या जांदा है कि पिप्पल लगाउण अते इस दी पूजा करन नाल धन अते उमर वधदे हन, नरकां तो छुटकारा हुंदा है। अश्वत्थता स्थापितो येन तत्कुलम स्थापितम ततः धन आयुषम समृद्धि स तु नरकात तारेत पितरण। तुलसी का पूजन भी खास लाभदायक मन्या जाता है। तुलसी का भी एक नाम वृंदा है अते तुलसी की परमार कारण ही वृंदावन नाम तो मशहूर शहर प्रसिद्ध होया है। तुलसी पूजन का यह मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। देवी त्वम निर्मिता पूर्वम अर्चितासी मुनीश्वरे नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। इंज होर भी अनेक वनस्पतियां दे पूजन का उल्लेख संस्कृत साहित्य विच उपलब्ध है। वनस्पतियां प्रति पूजन भाव अते सतिकार की भावना नू प्रकट करदियां वैदिक ऋषि कामना करता है कि साडी धरती हरे भरे वना भाव जंगलां अते पर्वतां नाल हमेशा भरी रहे। गिरियस्ते पर्वता हिमवंतो अरण्यस्ते पृथ्वी सियोन्म अस्तु।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਹਿਤਯਮ ਸੁਧਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਲੋਨੀ ਭਾਰਤਵਾਜ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਨਸਪਤੀ ਪੂਜਨ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਮਹੇ।

I doubt that the imagination can be suppressed. If you truly eradicated it in a child, he would grow up to be an eggplant. मुझे संदेह है कि कल्पना को दबाया जा सकता है. अगर आप सचमुच इसे एक बच्चे के भीतर से निकाल दे तो वो बड़ा होकर एक बैंगन बन जाता है. इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, सेज एल्बर्ट आइंस्टाइन. चेतन विल स्पीक अबाउट द बेनिफिट्स एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन इन टुडेज लम्हे प्रोग्राम. द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति पहचाने. कुछ लोग ऐसे हैं जिसे ये पता नहीं होगा कि व्हाट इज विजुअलाइजेशन, कल्पना क्या है. सबसे पहले मैं उसे बता दूं कि विजुअलाइजेशन होता क्या है. जब हम कुछ सोचते हैं तब हम जो भी सोचते हैं उसका पूरा चित्र हमारे दिमाग में बन जाता है.

जैसे कि हमने अभी सोचा कि कल हमने थिएटर में बैठकर मूवी देखी थी, तुरंत हमारे दिमाग में थिएटर की सारी छवियां आ जाती है, हमें वह सभी कुछ दिखने लगते हैं जो हमने किया था, वह सब एक के बाद एक हमारे दिमाग में पिक्चर के रूप में प्रकाशित होता है, उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। अगर किसी को मेरी तरह समझ में नहीं आया है तो डोंट वरी, आगे सुनते सुनते सब समझ में आ जाएगा दोस्तों, बने रहिए चेतन के साथ, लेकिन उसके लिए पूरा ये प्रोग्राम आपको सुनना पड़ेगा।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। हमारा दिमाग सिर्फ चित्र को समझता है, शब्दों को नहीं। हम जो कुछ भी सुनते हैं उन सारे शब्दों की तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि एक इंसान पेड़ के नीचे बैठकर आम खा रहा था। अब आपका दिमाग में तस्वीर बन गई होगी, क्योंकि हमारे दिमाग के पास इन सारे शब्दों की तस्वीर है। लोग पढ़ाई में अच्छा इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि पढ़ाई के दौरान जो शब्द हम सुनते हैं उसमें से 50% शब्द की तस्वीर हमारे दिमाग के पास नहीं होता, और हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। सोच दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। अब आपके सामने एक सवाल आ गया कि किसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं और किसे नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, आपका कोई दोस्त यानी मैं आपको कहता हूँ कि आने वाले सब एग्जाम्स में मेरे रैंक बहुत ख़राब होंगे, और आप कहते हैं कि मैं तो जहाँ जितना भी पढ़ाई करूँ मुझे अच्छे रैंक आएंगे। इसमें से आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है और मेरी नेगेटिव। फाइनल रिजल्ट आएगा, आप सच में अच्छे रैंक के साथ पास हो गए होंगे और मैं फेल। आप ध्यान से सुनना और समझ में न आए तो अपने आप को दोष नहीं देना, मुझे ही कुछ कहने में प्रॉब्लम हुआ होगा। विजुअलाइजेशन के साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का क्या संबंध है? हमारी ये सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम कोई काम लिए नेगेटिव सोच रखते हैं तब हमारे दिमाग में जो पिक्चर बनती है वो भी नेगेटिव ही बनती है, जिस वजह से हम कभी उस काम को सफल नहीं बना सकते हैं। आप परीक्षा में अच्छे रैंक के साथ पास हुए इसलिए नहीं कि उसके पास नॉलेज थी, इसीलिए कि उसके पास पॉजिटिव थिंकिंग थी जो उसके दिमाग में ऐसे पिक्चर बना रही थी जो उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। रास्ते पर चलते गाड़ियां, हवा में उड़ते हुए प्लेन। अभी आप रेडियो के माध्यम से चेतन का ये लम्हे प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सब टेक्नोलॉजी है दोस्तों। सब कुछ तभी बना तब किसी ने ये सब अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन किया हो, लेकिन अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ प्रयास भी किया तब जाकर आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। हमारा दिमाग वह सब कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आज के इस जमाने में हमारे पास सोफिया जैसी एक रोबोट है। किस वजह से दोस्तों? इसीलिए कि जिस किसी ने उसे बनाया था महान था, नहीं वह भी एक आम इंसान। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसके पास सोच है। तो तुरंत अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बदल लिए दोस्तों। जिस वजह से हमारी विजुअलाइजेशन की क्रिया हमें सब नेगेटिव ऑप्शंस देती है, वी बिकम फेलियर्स। पूरी लाइफ सिर्फ आई कैन एंड आई कैनॉट पर निर्भर है। आप क्या सोचते हैं पर आपका जीवन निर्भर है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ्स।

0: 7039. I repeat, 09515227039. और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com.
1: बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जिसका यह सवाल होगा कि मूवी की कहानी पूरी याद रह जाती है, लेकिन सब्जेक्ट के लेसन्स क्यों याद नहीं रहते? मूवी के सॉन्ग्स भी याद रह जाते हैं, लेकिन कविताएं क्यों याद नहीं रहती? इसका कारण यह है कि मूवी देखते समय उस पर दिखाए गए चलचित्र हमारे दिमाग में बस जाते हैं और पढ़ते समय हमारा ध्यान कहीं और हो जाता है। अगर आप पढ़ते समय दिए गए पाठ को कल्पना के रूप में दिमाग में कैद करें तो 110% आप वह कभी नहीं भूल पाएंगे। पढ़ाई करते समय उसमें दिए गए शब्दों को अपने दिमाग में चित्र, छवियां और भावनाओं के साथ कनेक्ट करें और सोचो कि आप एक मूवी देख रहे हो, पर पाठ की मूवी के रूप में स्टडी करो। तब आपके द्वारा किए गए स्टडी आप कभी भूल नहीं पाएंगे। कभी कभी हम ऐसा कुछ स्टडी करते हैं जिसमें हमें रुचि नहीं, जिस वजह से हमारे दिमाग में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए अपनी पसंद को हमेशा महत्व दें। यदि आप अपनी छवि को आधे मिनट तक पकड़कर रख सकते हैं तब आपकी विजुअलाइजेशन क्षमता अच्छी है। और भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपके लक्ष्य को पाने से रोकते हैं, जिसके बारे में मैंने कई बार अपने प्रोग्राम्स में आपके साथ शेयर किया है। विजुअलाइजेशन को शक्तिशाली बनाने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले प्रोग्राम में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएगा आपका दोस्त होस्ट और आरजे चेतन। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515222।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: हुणे तुसीं सुन रहे सी प्रायोजित प्रोग्राम लम्हे। असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। हुण सुनदे हां हिंदी फिल्मी गीत।

तुसे सुन रहे हो प्रोग्राम सुर सरता तहत अजीत कौर ते गाए गीत। हुन सुनवा जा रहे हैं गीत पुन्निया दे चानन नूं।

आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे हो जी सुरसरता प्रोग्राम च अजीत कौर दे गाए गीत। पैरां विच पाके जुत्तियां

0: ਇਸੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਸਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਯਾਨੀ 9:15 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਪੋਟਲਾਈਟ, 9:30 ਵਜੇ ਸਾਹਿਤਯ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 10 ਵਜੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर-18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है

0: भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60

0: नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चौथे लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम राय

0: जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi. Says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards US military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under 18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliver

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की, आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता की एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया।

भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नामांकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम पर चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पहले कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन डी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही है, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं, जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर

0: एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है, ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
1: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी को यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसे ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही वहां होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और थोड़ी इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देने लगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, उसके बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं दिल्ली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोबेल टाइम्स विशेषकर उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। फिर वहाँ दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवार संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बहुत मजेदार है। वह ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी सची रानी बूटो, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वाइट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखते के कर। उसने कहा यार तुम लिख हमारे यहाँ दिखाओ, तुम क्या कहानी लिखते हो, मैं देखूँ तुम्हारी कहानी। तो मैंने डर के मारे मैंने कहा नहीं, बड़ा बड़ा मैगजीन है, कौन छापे है, क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी, उसने जी उन्होंने कहा तुम्हारी कहानी ठीक

0: गया तो मैं सका हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन्होंने एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा कर रहा। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर किए, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गया और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था, तो फिर मुझे वहां से लेटर आया मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा, पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर वो मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वाली लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे। जाते हुए बोले मैं तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूँ लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मगर एक चीज ये थी उसमें फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
0: असल में मेरे लिए दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आप उन चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, एक खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए कारण वही है, मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उस पर कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं अभाव की जो स्थिति है, आपने सहा है तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाती है, औरों से भी सीखती है, औरों को भी समझने की कोशिश करती है। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए वो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में

0: में होना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा, वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम में उन्होंने ले ली है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नैरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन

0: मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नैरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मक है, जो लिखना है, उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ में है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपनी चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है। तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। ये इसका वो महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज
0: हाँ
1: जी,
0: जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे
0: बहुत
1: साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर, सर
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के।
3: जी,
4: उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे, जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने।
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था
3: जी,
4: उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था, किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखार रहा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
4: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
3: जी।
4: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
3: जी,
4: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो आकाशवाणी ने किया है
3: जी।
4: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया
3: जी,
4: इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा

0: ऐसा हुआ या किशोर दा ने गाते समय शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
1: जी, अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
0: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों, या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो योगदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है, जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से, कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है, लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभ मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से

0: चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता
1: बिल्कुल
0: हूँ,
1: बिल्कुल
0: वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना हूँ। तो
1: जी
0: मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए, और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में
1: जी
0: सुने। तो
1: बिल्कुल
0: हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं,
1: जी
0: उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता।
2: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी। सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन, वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, विकृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, जो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुली जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक विल ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुली।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉक्टर विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: Born into a music loving family in Pune, Rishikesh was initiated into vocal music at the tender age of 5 by his father, Shri Purushottam Gangurde. He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.

0: ऋषिकेश गांगुड़े आकाशवाणी के ए श्रेणी के गायक कलाकार हैं। उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है, जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है, और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है, और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुड़े इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडिली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट हु ट्राइज टू गिव एक्सप्रेशन टू द ब्यूटी, ग्रैंडियर एंड स्वीटनेस ऑफ म्यूजिक सो एज टू टच द ह्यूमन हार्ट, एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज सिंगिंग। Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru, Pandit Ullas Kashalkar, in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapeeth, Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुड़े जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, मूल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे तीन ताल में ही दो द्वित बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी and on the harmonium by Shri Makarinda Kharwandikar. Rishikesh begins his vocal recital with Raag Bihagda. The Vilambit composition is set to Teen Taal. This will be followed by Druta compositions in Teen Taal.

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेशी से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुली जी का शास्त्रीय

0: गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा।

0: सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलो 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palm olein, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabanna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
2: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chandigarh area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said

0: India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart, Shishir Khanal, in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship. The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development, cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Khanal said India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Tensions across West Asia escalated sharply on Saturday after Iran launched ballistic missiles toward United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. According to the U.S. Central Command, Iran fired 7 ballistic missiles following U.S. strikes on Iranian coastal surveillance and radar installations at Keshm Island and Goruk near the Strait of Hormuz. Initial assessments indicated that 6 missiles were intercepted while a 7th failed to reach its target. There were no immediate reports of casualties among U.S. personnel. In tennis, Russian eight-seeded Mira Andreeva won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalanski of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले रात दे 11:10 हो रहे ने, साडी ए सभा दा प्रसारण समाप्त हुंदा है। मीडियम वेव 873 किलोहर्ट्ज़
2: आकाशवाणी पंजाब पंजाबी दी आवाज। मैं थोड़ा दोस्त हमदम पारस चड्डा लैके हाजिर हो चुका प्रोग्राम सौगात सौगात गल्लां दी सौगात गाणियां दी और सौगात तुहाडे नाल रूबरू बैठ के गल्लां करन दी। जी हाँ, तुसी नंबर जानदे हो, तुहाडे दिलां च वसदा है, पर दसना मेरा फर्ज है। 94-65-53-60-77 9465536077 ये साडा वट्सएप नंबर है, जिसे तुसी अपने हत्थां दा जादू दिखा के वट्सएप ते मैसेज टाइप करके अपनी मनपसंद गीत कोई गल साढ़े तक पहुँचा चाहते हो तुसी पहुँचा सकते हो। 0181-23-42-171 नंबर मिला के तुसी अपने दोस्त पारस तक पहुँच सकते हो। गल्ला उही ने जो तुहाडे दिल दे करीब ने, और हर वार की तरह इंतजार तुहाडा ही हुंदा है कि तुसी प्रोग्राम दे विच नंबर मिला के अपने दोस्त पारस तक पहुँचोगे। हर वार की तरह चिट्ठियां जो बहुत ही मिठियां साढ़े कोल पहुँच चुकियां हुंदियां ने, और चिट्ठियां दे नाल तुहाडे नाल जिहड़ा प्यार दा सिलसिला है वो साडा इदा ही चलता रहिंदा है। ये साथ ही शाम इदा ही बनी रहे। सो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, मिलते हैं इस गीत नाल, और जल्दी तो जल्दी नंबर मिला के अपने दोस्त पारस तक पहुँचो।

0: ठंड का इंतजाम सानू करना पैना है, जिस हिसाब नाल सारे गाइड कर दिता है। अज की खास गाना साडे लई तुसीं लेके आए?
1: देखो तुहाडे चैनल चल सारे गीत बहुत ज्यादा वधिया ने जी, पर जिहड़ा असीं अज गीत सुणांगे रणजीत बाबा दा लाहौर गीत सुणांगे जी।
0: ठीक है जी,
1: मैनूं फेर दुबारा बापू गल्लां दस लाहौर दीआं।
0: क्या बात है, क्या गाने दी फरमाइश कीती है, फोन करने लई बहुत बहुत शुक्रिया। इदां ही कॉल
1: करदे रहो, बहुत बहुत धन्नवाद जी।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे ने?
1: जी सर
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने?
1: जी बेल सिंह बस्सी शेख जनक नगर जलंधर वालों सारे सुनौले श्रोतियां प्यार भरी सत श्री अकाल जी।
0: क्या बात है, जलंधर वाले हो अज ते कमाल हो गई है। जलंधर वालों की मतलब जड़ी कॉल्स है ना साढ़े कोल बेशुमार पहुंच रही ने, क्योंकि हर बार हर साल मैंने हर प्रोग्राम सुना दी यही होंगी है भी साढ़े सारे की कॉल मिल जाती है, तो जेडे जलंधर वाले ने उन्हों की वारी नहीं आती। तो अज मतलब जलंधर वाले छाए पे ने प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगता है कि जलंधर तो चल के आकाशवाणी जलंधर के विच कॉल पहुंची है। तो अज की खास साढ़े लिए लैके आए हो सौगात?
1: धन्यवाद
0: ठीक है जी, उन्होंने तुम याद किया, थोड़े तक पहुँचा रहे हैं फोन करने, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: जग्गी भा दुध भी पा दे ते चीनी भी, पर इन्हां नालों दो चूंडियां कट।
1: समझ गया साहब जी, मेरी मनो ना तुसी छाटे ही दियो।
0: भई तू भी अपने गाहक नू आप ही बजा रहे हैं।
1: ओ मैं थानू थोड़ा बजा रहा साहब जी, आ जेड़ा थानू मेरी दुकान तो दूर कर रहा है, मैं तो उस डॉक्टर नू छड्डन नू कह रहा हां, आ जेड़ा थानू चाह पकौड़िया तो मना कीता जिन्ने।
2: अब बिस्कुटों का एक पैकेट दें जगी पा।
3: ओ चार कप चाह साने भी चंगी तरह काढ़ के जगी पा।
1: लो जी गर्मा गर्म चाह विक्रम सर, आडे वाली ते आड़ी बड़े साहब जी ते आड़ी ता ब्रैड पकौड़ा मैडम जी। वैसे उन्हू तैयार होने च ना 2 साल 11 महीने ते 18 दिन लगे सी।
4: किन्नू
5: ब्रैड पकौड़े नू जिहड़ा तुहाडे हाथ च साडा जग्गी भा प्राचीन पकौड़े वेचदा।
1: ओ क्यों मैडम जी नू डराने हो महाराज, खाओ मैडम जी। ओ खाओ मैडम, ओ एवें पलटा पलटा के ना देखो ब्रैड पकौड़ा बिल्कुल ताजा। मैं तो साढ़े संविधान बारे गल कर रहा सी।
4: संविधान
1: जी मैडम जी, 2 साल 11 महीने ते 18 दिन च तैयार होया सी अपना संविधान।
2: क्या बात है जग्गी भा, रट के रखिया होया है।
1: ए तो सारे नू पता ही है, अपने देश की गल है, इन्ना तो याद रखना ही चाहिए है कि नहीं। 26 जनवरी 1950 नू भारत का संविधान लागू होया सी। इस दिन साडा देश पूर्ण गणतंत्र देश घोषित होया सी। ओ की कहंदे आ संपूर्ण गणतांत्रिक देश बड़ी मेहनत करके बनाया सी संविधान। दुनिया भर के दूजे देशों के संविधान दियां जिन्नियां चंगियां चंगियां गल्लां सी ओ सारियां साडे वाले विच ही ने। साडे अधिकार की ने सब कुछ लिखिया होया संविधान च, साडे फर्ज की ने ये भी लिखिया होया, मतलब देश किवें चले किधर नूं चले। मैं तो कहना जी साडा ग्रंथ है देश का सब तो बड़ा भरोसा यही है मैडम जी। अंबेडकर बाबा जी प्रधान सी संविधान बनाउण वाली कमेटी दे।
2: ए है साडे जग्गी भा दी असली पहचान। देखिया मैडम जी जग्गी भा दे ज्ञान नूं छा गया जग्गी भा तू।
1: की तुसी विक्रम बाबू जी सानू ज्ञान किथे।
2: ओ जग्गी भा ओ कदी कदी मेरी गल भी मान लिया कर, विद्वान तां तू हैगा।
1: देखो जी आपा हैगे हिंदुस्तानी, सानू हिंदुस्तानी रहन दिओ। आ देखो की लिखिया जग्गी हिंदुस्तानी दी चाह दी दुकान।
0: भई जग्गी आ गल तां तू 16 आने सच कही है।
1: ते मैडम जी गणतंत्र दिवस ते सुतंत्रता दिवस जोर शोर नाल मनाउणा चाहीदा। विक्रम बाबू जी ठीक कह रहे ने, गणतंत्र दिवस साडी पछाण दा दिन है। इस दिन तां तय होया सी कि असीं देश दे रूप च किधर जावांगे, की सोचांगे, की करांगे। बड़े साहब जी इधर ना थुकना पान। और डस्टबिन हैगा बेचारा अपनी बॉडी ते लेके खलोता, मैनू इस्तेमाल करो, जरा मिल के आओ जाके, चार कदम ते हैगा बेचारा।
0: ठीक है ठीक है, रोज भूल जाना है।
2: जग्गी भा रोज ही टोकदा
1: ते रोज साहब जी मन भी लेंदे ने। ओ की है जी पान खाना तुहानू अपना अधिकार लगदा, ते दुकान ते आले दुआले दी सफाई रखना मैनू अपना फर्ज। आ हुण चाह ले लो जी, ठंडी हो जानी है।
0: जरूर जनाब जरूर।
5: साहब जी मैं सोच रहा सी के जे मैनू फ्राइडे ते मंडे दी छुट्टी दे दिंदे तो मैं फैमिली नाल किते घुमाउंदा जाके।
0: हाँ हाँ विक्रम, सोचण ते किहड़ा मुल लगदा है, सोच तां तू अच्छा रहा है, पर छुट्टी दी तां गल भी ना करी। भाई बजट दा टाइम है, 36 काम ने ऑफिस च।
4: नैशनल हॉलीडे संडे नूं आ जाए तां की फायदा, सर ऑलरेडी ऑफिस दी छुट्टी रहिंदी है। काश वीकडेज च हुंदा तां मजा आ जांदा, एक दिन दी छुट्टी तां मिल जांदी।
1: आ परेड देखण नहीं जांदे तुसीं मैडम?
4: परेड वो भी कोई देखने की चीज़ है?
1: लो मैडम जी वही तो देखने वाली चीज़ है, एक बार जाके देखो जरा। आह जदों तरंगा लहराउंदा एक तो एक बद के टुकड़ियाँ निकलदियाँ झाकियाँ निकलदियाँ तो लगता इन्ने साल आपां बहुत कुछ कर लिया। बहुत ही मज़ा आता मैडम जी, बहुत ही।

0: करो, देश खुद ब खुद ओदां दा हो जाएगा जिदां दा आपां चाहुंदे आ।
1: ओ की कहंदे आ कि इह ना सोचिए कि देश ने सानू की दित्ता, पहला इह सोचिए कि आपां देश नू की दित्ता।
2: हां एग्जैक्टली एग्जैक्टली, असीं जो कुछ भी देश लई अच्छा करदे आ वो एक तरह नाल इन्वेस्टमेंट है। सिंपल जी गल है, असी देश नू बदलना है तो सानू अपनियां आदतां बदलनियां पैणगियां।
1: बिल्कुल सही साहब जी, दिन भर च मैं 200 पेपर प्लेट कप डस्टबिन च पाना, जमीन तो चक चक के जाना कितने नहीं, आ सामने कोल ही है, पर कोई इन्नी भी खेचल नहीं करना चाहता। आ हुण देख लो, आ सर जी ने इन्ना कुछ समझाया, आ बिक्रम भरा ने डूना फिर इत्थे सिट दिता।
3: गलती हो गई जगी पा,
0: गलतियां घट करनियां सीखो, ऑफिस च भी ते बाहर भी।
1: वैसे पान खा के तुसी भी किते भी नक्शा बना देने हो। वो भी कोई चंगी आदत नहीं साहब जी।
0: दिता वचन हुण नहीं करांगा।
2: सच तो यही है कि ये छोटिया छोटिया गल्लां ही मिलके देश के निर्माण च तुहाडी वड्डी भूमिका तय कर दियां ने। इन्हां तों ही तय हुंदा है कि देश नूं आपां किधर लैके जा रहे हैं, देश किवें दा दिखेगा ते किवें दा रहेगा।
3: सर जी हुण साडी इन्नी भी ना लाई जाओ, जे साडे चाह दा एक गिलास सुट्टण नाल देश दी दिशा तय हुंदी है तां ओह वड्डे वड्डे नीतिगत फैसले कादे वास्ते हुंदे ने, जिहड़े वड्डे वड्डे नेता मंत्री ते IAS लोग करदे ने, जिन्हां उत्ते संसद विच तू तू मैं मैं ते वॉकआउट तक होंदा रहिंदा।
2: बई केड़ी दुनिया च रहिंदे हो तुसी, इह वी ऐसे ही एक नीतिगत फैसले दा हिस्सा है। क्यों बोलदे हो कि देश भर च स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है?
3: स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन नाल की हो गया फिर? केड़ा तीर मार लिया सरकार ने?
0: की बोली जाना है, सरकार ने पिंडां तो लैके शहरां तक जगह जगह टॉयलेट्स बनवाए। इसे मिशन के तहत हर मोहल्ले च घरां तो कूड़ा चुकन वालियां गड्डियां भी लाईयां गईयां ने।
2: हुण तुसीं आप ही दसो, जे असी अपने घर च या बाहर बने टॉयलेट जाण दी बजाए जिथे मर्जी बह जाण दी आज़ादी दी अपनी गंदी आदत ना छड़ पाईए ते अपने घर का कूड़ा गड्डी च ना पाउण जाईए तां दोष किहदा, साडा की देश दा?
1: जी साहब जी, साढ़े इत्थे टॉयलेट बन गया ते साढ़े घर भी बन गया, बड़ा आराम हो गया जी।
2: तो जेकर सोचो तो इहदा सूत्र भी किते ना किते संविधान दे तुहाडे अधिकार नाल ही जुड़िया होया है, जिहड़ा देश नूं एक कल्याणकारी देश दे रूप विच पेश करता है।
3: पर सर जी, इस कल्याणकारी सोच वाले देश च करप्शन भी मौजूद है।
4: लोकतंत्र है भाई, सिर्फ साढ़े लई, कईयां वास्ते तां लुटतंत्र है। बस ए साडा अनलिस्टेड अधिकार है, हुण ऐसे लोकतंत्र दा भी की जिथे किसे नूं डर लगदा है, कोई असुरक्षित महसूस करदा है, कोई बुखलाया होया है, सारे परेशान ने, कोई भी कुछ भी बोल के निकल जांदा है। अजकल देख ही रहे हां सोशल मीडिया ते किवें नफरत फैलाउण वालियां गल्लां वायरल हुंदियां रहिंदियां ने।
0: ये जो लोग कह पा रहे ने ना, वो भी इसे वास्ते कि साडे इत्थे लोकतंत्र है, कहण वास्ते सारे आजाद ने, सारियां दा फंडामेंटल राइट है अपनी गल कहण दा।
2: अपनी गल कहण विच कोई भी इस गल दा ख्याल नहीं रख रहा कि उहदे कहण नाल किस किस उपर की असर पै रहा है। देश विच इह जिहड़ा फालतू दा हताशा दा माहौल बनिया है, उहदे च इहनां कहण वालियां दी भूमिका ज़्यादा है। सारियां नूं बस अपने कहण दी आज़ादी दा ख्याल है, इहदा ख्याल किसे नूं नहीं कि इहदे नाल दूसरे लोग किवें आहत हो रहे ने।
0: इस गति नाल तां पता नहीं देश कित्थे जाएगा।
2: देश तां किते नहीं जाएगा ब्रदर, देश इत्थे ही रहेगा। सोचण दी गल तां बस इह है कि लोकां दा की होएगा। समस्या इह नहीं है कि लोकां नूं अधिकारां बारे पता है ते फर्जां दा नहीं है, इह तां समस्या है ही नहीं। पता लोकां नूं दोवां दा है, अधिकारां दा भी है ते फर्जां दा भी है।
1: फिर साहब जी?
2: फिर फर्क बस इन्ना है कि जदों गल अधिकारां दी हुंदी है तां उदों अकल अपनी हुंदी है।
3: मैं समझिया नहीं सर।
2: इहनूं इदां समझ लो कि लोक अधिकारां नूं तां अपना

मेरे साहिब तू मैं माण निमाणी, अरदास करी प्रभ अपने आगे, सुन सुन जीवा तेरी बाणी। अकाल पुरख प्रभु ते माण करन वाले, उसे दी ही सिफतो सलाह करनी लोचदे ने। सच्चे गुरु दे शब्द राही प्रभु दी निकटता हासिल करदे होए, माण मत्ते महसूस करदे होए उस दे विच लीन हो जांदे ने। करता तू मैं माण निमाणे, माण महत नाम तन पलै, साचे शब्द समाणे। सरवण करदे आ भाई अवतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

करता तू मैं मान निमाणे, मान महत नाम तन पलै, साचे शब्द समाणे। इस शब्द का गायन किया सी भाई अवतार सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। अकाल पुरख परमात्मा करता है, खसम है, गुरु है, ठाकुर है, गल की उसनू कितने ही नावां नाल संबोधन किया जाता है। अनेक जीव रूपी स्त्रियां उसनू अपना साई समझदियां होईयां उस दियां चेलियां हन। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही कणचेरी राम, तू सागरो रतनागरो हौ सार न जाना तेरी राम। सरवण करदे आं भाई मनजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: तू ठाकुरो बैरागरो, मैं जेही कणचेरी राम, तुम सागरो रतनागरो, हाउ सार न जाना तेरी राम। इस शब्द का गायन किया सी भाई मनजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी छणबीर सिंह।
1: राग सूही छंत महला पंजवां कर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू ठाकरो बैरागरो, मैं जेही कणचेरी राम, तू सागरो रतनागरो, हों सार ना जाना तेरी राम। सार ना जाना तू वडदाना, कर मेहरमत साई, कृपा कीजै सा मत दीजै, आठ पहर तुद त्याई। गर्भ ना कीजै रेण हो वीजै, ता गत जीरे तेरी, सब उपर नानक का ठाकुर, मैं जेही कणचेरी राम। ये पावन पवित्र शब्द गुरु अर्जन देव साहिब जी का राग सूही विच उचारण किया होया गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 779 उपर सुभायमान है। इस पवित्र शब्द द्वारा गुरु साहिब जी ने यह ज्ञान बख्शा है कि एक अकाल पुरख परमात्मा जो सब जीवां दे सिर दा साई है, जो सबना दा खसम है, असी जीव बहुत छोटे हाँ, वो निरंकार बहुत वड्डा है, अते सानू सारिआं नू समझ देण वाला, मत देण वाला होर कोई भी नहीं। अकाल पुरख परमात्मा दा नाम जो कि एक बहुत वडमुली नियामत है, गुरु साहिब जी ने परम पिता परमेश्वर जी दे चरणां विच अरदास कीती है कि दाता जी मैनू ऐसी समझ बख्शो कि तुहाडा नाम मैनू कदी भुले ही ना, हर वेले याद रहे। एक नाम है अते दूसरा मान। मान दा भाव है हंकार गर्भ। नाम जप जप के मनुख परमात्मा दे नेड़े हुंदा है, पर मान हंकार करके परमात्मा तो अपनी दूरी वधा लैंदा है। मनुखता नू संबोधन करदिआं गुरु साहिब जी ने फरमाया, हे प्राणी तू कदी हंकार ना करिया कर, बल्कि अपने मन विच इतनी निम्रता धारण कर कि सभना दे चरणां दी धूड़ बन जा। शब्द की आरंभता विच गुरु साहिब जी बख्शिश करते हैं, तू ठाकरो बै

कवन गुन प्राण पत मिलाओ मेरी माई, इस शब्द का गायन किया सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वक्-वक् चैनल अते आकाशवाणी दे वक्-वक् भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओह भी क्रिस्टल क्लीयर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

0: कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास।
1: इस भजन के नाल ही भक्ति संगीत दा प्रोग्राम इत्थे ही खत्म हुंदा है। डिटेल्स दी पंजाबी प्रसारण सेवा दा जलंधर केंद्र है, तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी।

अंतर्गत तेज पुंज त्यों लोग प्रगासै, देखत दरस भटक भरम भजत, दुख पर हर सुख सहज बिगासै। सेवक सिख सदायत लुबत, आलस मुह ज्यों कुसुम सुबासै। विद्यमान गुर आप थप्यो थेर साच।

तीन पान परपुर सोई, आपन सरस कियो ना जगत कोई, आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत।

निसंभो पुरखोत्तम अपार परे, करण कारण समरथ सदा सोई, सर्व जी मन ते आयो श्री।

मोह मल बेवस कियो, काम केस पछाड़ियो, क्रोध खंड प्रचंड, लोभ अपमान सो झाड़ियो, जन्म काल कर जोड़, हुक्म जो है सो मन्ना, पाव सागर बंदियो, सिख तारे सो प्रसाद।

आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर

भय अठसठ तीर्थ जिन हावै उतरै नाही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार।